आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
1: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90971602।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

श्री रामचरितमानस के प्रत्येक सोपान का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास ने देववाणी संस्कृत में रचित मंगलाचरण से किया है। इन छंदों में शंकर तथा श्री राम सहित अन्य देवताओं की स्तुति की गई है। प्रथम सोपान बालकांड के आरंभ में सरस्वती, गणेश, पार्वती, शंकर, कविश्वर वाल्मीकि तथा हनुमान की वंदना की गई है। द्वितीय सोपान अर्थात अयोध्या कांड गुरु रूप श्री शंकर तथा नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम की स्तुति से आरंभ होता है, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती, मस्तक पर गंगा, ललाट पर द्वितीय का बालचंद्र, कंठ में हलाहल विष तथा वक्षस्थल पर सर्पराज शेष सुशोभित हैं। भस्म से विभूषित शरीर देवताओं में श्रेष्ठ संहारकर्ता तथा भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापी कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण वाले ऐसे देवाधिदेव महादेव से गोस्वामी तुलसीदास अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। भक्त कवि की कामना है कि रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले श्री रामचंद्र, जिनका मुखमंडल ना तो राज्याभिषेक से प्रसन्न हुआ और ना ही जो वनवास के दुख से मलिन हुआ, सदा मंगलदायी हों। नीले कमल के समान श्याम वर्ण और कोमल अंग हैं जिनके, सीता जी जिनके वाम भाग में अवस्थित हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और धनुष सुशोभित हैं, उन रघुवंश नाथ का तुलसीदास नमन करते हैं।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रसाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
12: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है।

0: 9999366999।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।
6: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
7: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
0: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
0: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
0: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6052-62112 पे।
10: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62002434 03 62002434 03।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। डुमरिया घाट नदी में 3 किशोरियां डूबी, NDRF और SDRF की टीम जांच में जुटी। हत्या, लूट और चोरी के मामले में कई आरोपियों को अलग अलग जगहों से किया गया गिरफ्तार। उत्पाद पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया नष्ट और कई आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। अनंत सिंह केस में अब CID करेगी मामले की जांच। तेज बारिश और आंधी के वजह से मौसम हुआ सुहाना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज सुबह सुबह एक बहुत ही भयानक खबर सामने आई। तेज आंधी और बारिश के बीच ही एक गंडक नदी में 3 बच्चियों के डूबने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया घाट पर 3 किशोरियां अपने कुछ और सहेलियों के साथ नदी पार कर खेत में काम के लिए जाना चाह रही थी। इसी बीच गहरे पानी में जाने से 3 किशोरियां डूब गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। आनन फानन में पुलिस पहुंची। तेज बारिश और आंधी के बीच ही किसी तरीके से NDRF और SDRF की टीम को भी बुलाया गया। इस दौरान सभी टीम नदी में उतरकर इन लापता बच्चियों की तलाश में जुट गई। देर शाम तक खबर मिलने तक इन बच्चियों को बरामद नहीं किया जा सका था। 3 बच्चियां जो गहरे पानी में लापता हुई हैं, उनमें टंडसपुर गांव निवासी चंदन यादव की 2 बेटियां हैं और मजिस्टर राय की 1 बेटी है। गांव वालों के मुताबिक तीनों अक्सर खेती किसानी के काम के लिए नदी के उस पार जाया करती थी, और आज भी ये तीनों बच्चियां खेती के सिलसिले में ही निकली थी, लेकिन बीच नदी में पहुंचते ही हादसे की शिकार हो गई। खराब मौसम के वजह से रेस्क्यू भी प्रभावित हुआ। मोहम्मदपुर के थानाध्यक्ष और कई पदाधिकारी भी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं और बच्चियों की तलाश जारी है। इधर भोरे थाना की पुलिस ने भी लूट कांड के एक अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लूट कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त इमरान शेख को गिरफ्तार किया। यह विजयपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के इत्तेफाक शेख का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस अब इस पर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अभियान चलाकर हत्या, लूट, शराब तस्करी और अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी कड़ी में नगर थाना की पुलिस ने चोरी कांड के 2 अपराधिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी फूल मोहम्मद अंसारी, पिता हसमुद्दीन अंसारी, यह हजियापुर वार्ड नंबर 26 का रहने वाला है। दूसरा इरफान अली, पिता फरीद कुरैशी, यह भी गोपालगंज शहर के कैलाश होटल वार्ड नंबर 5 थाना नगर का निवासी है। दोनों को मानवीय और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस इन दोनों पर आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पकड़े गए आरोपी नागेंद्र पांडे, पिता स्वर्गीय गीता पांडे, साकिन चमनपुरा थाना बैकुंठपुर को गिरफ्तार करने के बाद आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और इसी मामले में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इधर माझागढ़ थाना की पुलिस ने 6 ग्राम स्मैक जैसे मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस ने प्रतापपुर गांव में छापेमारी की, जहां आरोपी को पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी का नाम सुल्तान अली, पिता स्वर्गीय शौकत अली, जो माझा थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव का निवासी है। इसको पकड़ने के बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल किया तो इसके पास से 6 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ है। अब पुलिस इस पर NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है और जब्त मादक पदार्थ की जाँच एक्सपर्ट टीम से करवाया जा रहा है। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी 440 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक कार को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने गोपालपुर के खरिया गांव के पास गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच अभियान शुरू किया। इसी दौरान एक कार की तलाशी ली गई तो कार के अंदर से 359 लीटर से अधिक विदेशी शराब और 440 लीटर देशी शराब भी बरामद किया है। इस मामले में आरोपी कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यह खगड़िया जिला के रहने वाले अलौली थाना के मछरा गांव निवासी सुरेंद्र राय का पुत्र है। इसकी कार को जब्त करने के बाद अब आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उत्पाद पुलिस ने आज कई जगहों पर शराब तस्करों के विरुद्ध भी कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के भाटवा मोड़ के पास 349 लीटर से अधिक विदेशी शराब को पकड़ा है। इस दौरान तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने गाड़ी और शराब को जब्त कर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर कुल 25 मामलों में पकड़े गए 1855 लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब को आज नष्ट किया। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक अमृतेश झा तथा कई पदाधिकारीगण मौजूद रहे। पदाधिकारियों के निर्देशन में ही शराब को JCB से कुचलकर जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। उत्पाद पुलिस ने बंजारी रोड में सर्विस लेन से एक स्कूटी सवार को 13 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ पकड़ा। पकड़ा गया आरोपी कुचायकोट का रहने वाला अमित शाह बताया जा रहा है। पुलिस ने इसकी स्कूटी, गाड़ी और शराब को जब्त कर लिया है और इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज उत्पाद पुलिस ने एक डंगा चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते हुए 2 मोटरसाइकिल के साथ 3 शराब तस्करों को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने 25 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब भी पकड़ी है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी मुन्ना राम, रामाधार राम तथा पवन कुमार है। इसमें मुन्ना राम और रामाधार राम ये दोनों भोरे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो वहीं पवन कुमार नालंदा जिला का निवासी बताया जा रहा है। इन तीनों आरोपियों पर पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। इनके शराब और मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। उत्पाद पुलिस ने कुचायकोट के करमैनी मोहब्बत गांव के पास 16 लीटर से अधिक देशी शराब को एक मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्कर गाड़ी और शराब छोड़कर फरार हो गया। उत्पाद पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र के एक डंगा चेक पोस्ट पर एक 65 वर्ष की महिला को 18 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई महिला का नाम चिंता देवी है, जो लामी चौर भोरे की निवासी है। इसके पास से शराब को जब्त किया गया है। अब इस महिला पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के बंजरिया में एक स्कूटी से 54 लीटर शराब जब्त किया है। इस दौरान तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्कूटी और शराब को जब्त कर अज्ञात के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026 के तहत आज जिला पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में नगर परिषद बरौली और मीरगंज के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया समाहरणालय के सभा कक्ष में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। चुनाव से पूर्व उप निर्वाचन पदाधिकारी शशि प्रकाश राय द्वारा सभी वार्ड पार्षदों को मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। मतदान के बाद जो परिणाम सामने आया उसके अनुसार नगर परिषद बरौली में सदस्य संख्या 1 पर मधुकर प्रसाद, सदस्य संख्या 2 पर अशोक प्रसाद और 3 पर जितेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया है। तो वहीं नगर परिषद मीरगंज के तीनों पदों के लिए केवल एक एक उम्मीदवार ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया था, इसलिए तीनों प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया, जिसमें 1 के लिए सुमन देवी, 2 के लिए सोनू प्रसाद सोनी और सदस्य संख्या 3 के लिए दीपक मिश्रा को निर्वाचित किया गया है। सभी लोगों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई, साथ ही निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। कुचायकोट के शेरपुर गांव में एक 15 वर्षीय बच्चे को विषैले सांप ने डस लिया, जिससे बच्चा अचेत हो गया। इसके बाद सांप को भी पकड़कर लोगों ने डिब्बे में बंद कर लिया और मरे हुए सांप के साथ घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांप को देखते ही मरीजों में भी हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल पीड़ित का इलाज चल रहा है। टीबी मुक्त परिकल्पना को साकार करने और लक्ष्य को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने डिजिटल तकनीक का सहारा लेते हुए एक बड़ी पहल की है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व टीबी दिवस के अवसर पर 24 मार्च को टीबी मुक्त भारत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अब टीबी के खिलाफ चल रहे राष्ट्रीय अभियान का अहम हिस्सा यह मोबाइल ऐप बन गया है। यह एप्लीकेशन न केवल मरीजों को उपचार और परामर्श की सुविधा देगा, बल्कि सामुदायिक भागीदारी को भी मजबूत करेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अपर सचिव एवं मिशन निदेशक आराधना पटनायक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर इस ऐप के व्यापक प्रचार प्रसार और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा सामुदायिक संगठनों को सक्रिय किया जा रहा है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के मामले में अब बताया जा रहा है कि सरकार ने उनके केस को सीआईडी को सौंप दिया है और सीआईडी अब इस मामले की जांच करेगी। पिछले 2 मई को सेमराव गांव में हथियार लहराने और अश्लील गानों के प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ था और इसी मामले में अनंत सिंह समेत 9 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसी मामले में अब सीआईडी को जाँच का जिम्मा सौंपा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में पंचदेवरी प्रखंड के विभिन्न पंचायत भवनों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर वहां के तमाम संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया है, ताकि सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दे सकें। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। डुमरिया घाट नदी में 3 किशोरियां डूबी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जांच में जुटी। हत्या, लूट और चोरी के मामले में कई आरोपियों को अलग अलग जगहों से किया गया गिरफ्तार। उत्पाद पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को किया नष्ट और कई आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। अनंत सिंह केस में अब सीआईडी करेगी मामले की जांच। तेज बारिश और आंधी के वजह से मौसम हुआ सुहाना। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
12: ठक ठक।
13: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
13: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
14: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
15: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
16: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
17: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
18: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
19: आप सुन रहे हैं भारत की अमर।

0: भारत के इतिहास में जहां बगावतों, साजिशों और खून खराबों का जिक्र है, वहीं रिश्तों की गहराई, जज्बात की पाकीजगी और इश्क का जुनून भी है। आइए आज हम एक ऐसी ही सदाबहार दास्तां से रूबरू होने की कोशिश करते हैं। सोलहवीं सदी का आखिरी दौर था, जब बादशाह अकबर के बेटे जहांगीर के यहाँ शहजादा खुर्रम पैदा हुआ, जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। उनका यादगार कारनामा है आगरा में जमुना के किनारे संगे मरमर से तराशा करिश्माई शाहकार ताज महल, जिसे खुर्रम यानी बादशाह शाहजहां ने अपनी महबूबा और बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इस बेमिसाल मोहब्बत की शुरुआत कैसे हुई, आइए सुनते हैं।
1: चलो चलो मीना बाजार चलो, अरे जल्दी करो।
2: हाँ हाँ, देखो मीना बाजार में भीड़ बढ़ रही है। थोड़ी देर में ही जहाँ पनाह जहांगीर, मल्लिकाए आलम नूर जहाँ, शहजादा परवेज, शहजादा खुर्रम, शहजादा शहरयार, शहजादियाँ, वजीर आजम आसिफ खान, सिपा सालार सब आने वाले हैं।
1: हाँ हाँ, और देखो कितने आले दर्जे की चीजें बिक रही है यहाँ पर।
2: उम्दा, एक से बढ़कर एक। वो जड़ाऊ खंजर देखो तो कैसे चमक रहा है, इसे कोई न कोई शहजादा जरूर खरीद लेगा।
3: आइए आइए, ये देखिए हुजूर, चांदी के पाजेब, ये तोड़े, ये कंगनों के जोड़े, ये नौ लखा हार, आहा। अर्जुमन बानो तशरीफ लाई है, कनीज गुलबहार का आदाब।
4: आदाब।
3: आइए अर्जुमन बानो, ये हार तो आप ही ले लीजिए, ये हार आपके हुस्न में चार चांद लगा देगा।
4: बहुत खूब, पर गुलबहार सांस तो ले लो, तुम अपनी चीजें बेचने के लिए कितना झूठ बोलोगी।
3: हाँ
5: बानो बीबी, मैं चंपा, सलाम पेश करती हूँ।
4: सलाम।
5: मेरे जेवर भी देखिए, ये
3: हाय हाय बानो बीबी, चंपा को छोड़िए, ये हार लीजिए, आप में खूब फबेगा। वो देखिए शहजादे खुर्रम इसी तरफ आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए।
4: ओई माँ।
3: अरे रुकिए, शर्मा गई। शहजादे खुर्रम को कनीज गुलबहार का सलाम, खुशामदीद हुजूर।
6: हाँ? सलाम सलाम।
3: ये देखिए जेवरात, ये खूबसूरत हार, जिन्हें पहनाएंगे आपकी मुरीद हो जाएगी सरकार।
6: हाँ हाँ, जरूर लेंगे गुलबहार, मगर पहले ये बताइए, वो जो खातून अभी यहाँ से गईं, वो कौन थीं?
3: कौन हुजूर? ओह वो वजीर आजम आसिफ खान की साहिबजादी और मलिकाए आलम नूर जहाँ की भांजी अर्जुमन बानो हैं।
6: अर्जुमन बानो। गुलबहार, हमारी तरफ से ये हार तोहफे में उन्हें पहुँचा दीजिए।
3: जरूर मेरे आका, कोई और खिदमत सरकार?
6: उन्हें पैगाम दीजिएगा कि हम उनसे मुलाकात के मुंतजर हैं। क्या वो महल की बारादरी में हमसे मिलना गवारा करेंगी?
0: उस बारादरी में अर्जुमन बानो अपना नूरानी चेहरा नकाब में छुपाए पहुंची थी। वहां खुर्रम और अर्जुमन बानो ने एक दूसरे को देखा, दिल ही दिल में पसंद किया और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। उस दिन जब वो सबसे छुपकर वहां पहुंची तो
6: अर्जुमन बानो, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना।
4: क्या कहें शहजादे, हमारा दिल हलक में आकर अटक गया है, हम डरते हैं कहीं कोई देख ना ले।
6: मैं जबीन नाजनीन, आपकी आवाज में कितनी मिठास है अर्जुमन बानो, कैसे कहूं, क्या आप हमारी शरीके हयात बनेंगी?
4: अभी आपने हमें जाना ही कहाँ है, पहचाना ही कहाँ है, फिर आप ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं?
6: आपने जो हार चुना वो कारीगरी का नायाब नमूना था, उसे चुनने वाली कोई मामूली लड़की नहीं हो सकती। आप वो हैं जिसकी पसंद हमारे जैसी है, आप कारीगरी की सही कद्रदान है।
4: आपने इस नाचीज को इतनी इज्जत बख्शी, उसके लिए शुक्रिया।
7: शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम वल्द नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, आपका निकाह अर्जुमन बानो वल्द अब्दुल हसन आसिफ खां के साथ तय किया गया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है?
8: कबूल है। मुबारक हो।
1: मुबारक
8: शादी
1: हो।
8: मुबारक हो।
2: आपको भी मुबारक हो।
0: अपनी काबिलियत के बल पर शहजादे खुर्रम का रुतबा अपने सारे भाइयों से आगे बढ़ता जा रहा था। मेवाड़ की फतह के बाद बादशाह जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को शाहजहां के खिताब से नवाजा, लेकिन ये बात उनकी बेगम और खुर्रम की सौतेली माँ मलिका आलम नूर जहां को रास नहीं आई, जिन्होंने बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। एक दिन जब शाहजहां अपने वाले जहांगीर से मिलकर वापस आए,
4: तस्लीम मेरे आका, आइए। आप इतनी जल्दी जहांपनाह से मिलाए, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
6: हाँ बेगम, अब्बा हुजूर कुछ खफा लगे। मलिका आलम ने ना जाने क्या कह दिया है उनसे, शायद अब वो हमारी कामयाबी से जलने लगी हैं।
4: हाँ शहजादे, हमने भी सुना है वो अपने दामाद शहजादा शहरयार को बादशाह और अपनी बेटी लाडली बेगम को मलिका आलम बनाना चाहती हैं।
6: ये क्या कह रही है बेगम? शहजादा शहरयार निहायत ही अय्याश और निकम्मा है। वो नालायक मलिका आलम नूर जहां की उंगलियों पर नाचेगा बस।
4: शहजादे, मलिका आलम यही तो चाहती है कि सल्तनत की बागडोर उन्हीं के हाथों में रहे।
6: हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे।
4: जरा एहतियात से मेरे आका, मलिका आलम नूर जहां बहुत ही ताकतवर है और बहुत खतरनाक दुश्मन साबित हो सकती है।
0: अब तक अर्जुमंद बानो शहजादे शाहजहां की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थीं। वक्त बीता, शाहजहां काबुल में थे, तभी उन्हें खबर मिली कि आलम पनाह जहांगीर अपनी बीमारी की वजह से गुजर गए और शहजादे शहरयार ने तख्त हथिया लिया। शहजादे शाहजहां छटपटा गए।
8: नहीं, नहीं अब्बा जान, बेगम बदकिस्मत है हम, क्या करें अब? अपने अब्बा की मौत का मातम मनाए या उस नालायक शहरयार को तख्त से हटाने के कदम उठाएं?
4: हौसला रखिए शहजादे, अपने हक के लिए लड़िए। आप आगरा जाइए, हमारे अब्बा जान आपकी मदद करेंगे।
8: हाँ हाँ बेगम, हमें आगरा जाना होगा।
0: शाहजहां जब आगरा पहुंचे, तब तक अर्जुमंद बानो के वालिद आसिफ खान ने शहजादे शहरयार के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। आगरा पहुंचने पर शाहजहां का जोरदार इस्तकबाल हुआ और उनकी ताजपोशी की गई।
9: बादब बा मुलाहिजा होशियार, जिल्ले इलाही आलम पनाह अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहां तख्ते सल्तनत पर रौनक अफरोज हो रहे हैं। बादब बा मुलाहिजा होशियार,
10: जिल्ले सुभानी मुबारक, ताजे सुल्तानी मुबारक, मुबारक हो मुबारक हो।
11: मुगले सल्तनत के सरपरस्त
10: जिंदाबाद जिंदाबाद।
12: मरहूम आलम पनाह के सबसे बहादुर और समझदार बेटे हैं हमारे शहंशाह, तख्त के असली वारिस। एक बार फिर मुगलिया सल्तनत बुलंदी छुएगी।
0: इस ताजपोशी से अर्जुमंद बानो भी बहुत खुश थे।
4: खुशामदीद जिल्ले सुभानी, ताजे सुल्तानी मुबारक हो।
6: अगर आप हमारे शरीके हयात ना होती तो आज हम कुछ भी ना होते। आपकी बेपनाह मोहब्बत, आपकी बेमिसाल सरपरस्ती के बारे में जो भी कहे कम होगा। इसलिए जान, आज हम आपको मल्लिकाओं की मल्लिका मुमताज महल के खिताब से नवाजते हैं।
4: शुक्रिया मेरी आका।
0: एक बादशाह की मोहब्बत की इस दास्तान ने दुनिया के एक अजूबे ताजमहल को किस तरह खड़ा किया, मेरी ही तरह आप भी ये जरूर जानना चाहेंगे। मैं आपका दोस्त हाजिर होता हूँ बस थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए अरब की अमर कहानियाँ।
13: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
14: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
15: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स। अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
14: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
15: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
14: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
15: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
16: सुनिए सुनिए सुनिए,
17: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
16: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
17: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
16: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
18: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
19: हर घर सूर्य घर।
20: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
21: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
20: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
21: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
22: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
23: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
22: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
23: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
24: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
23: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
24: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
23: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
24: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
0: अब तक आपने सुना 16वीं सदी के आखिर में पैदा हुए शहजादा खुर्रम उर्फ शाहजहां, बादशाह जहांगीर के बेटे थे। उनका इश्क वजीर आजम आसिफ खान की बेटी अर्जुमन बानो से हुआ और शादी भी हुई। खुर्रम अर्जुमन बानो की खूबसूरती और अकलमंदी दोनों से ही बहुत मुतासिर थे। मेवाड़ और दखन की बगावतों को दबाने की वजह से बादशाह जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां का खिताब दिया था, लेकिन मलिकाए हिंद नूरजहां अपने दामाद शहरयार को आगरा के तख्त पर बिठाना चाहती थी। उन्होंने शाहजहां को काबुल भिजवा दिया। इधर जैसे ही बादशाह जहांगीर की मौत हुई, शहजादे शहरयार ने गद्दी हथिया ली थी। इसके बाद शाहजहां ने आसिफ खान से मिलकर बगावत कर दी और दिल्ली के तख्त पर काबिज हो गए। अब आगे हर तरफ खुशहाली थी। शाहजहां को जब भी जंग के मैदानों से फुर्सत मिलती तो वो आगरा में मुमताज महल के साथ जमुना के किनारे शामें गुजारने लगे।
4: ओह, ये जमुना का किनारा कितना हसीन है, कितनी खूबसूरत जगह है ये, जहाँ हमने मोहब्बत की कसमें खाई। जानते हैं मेरे आका, वहाँ बुरहानपुर में हमें ये बहुत याद आते थे।
25: हाँ जान, यही हमारी मोहब्बत का एक महल बनेगा, जिसकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलेगी।
4: संगमरमर का तराशा हुआ
25: जिसमें हमारी मोहब्बत की खुशबू होगी,
4: जिसकी खूबसूरती शफाक चांदनी में नहाकर हमारी मोहब्बत की तरह परवान चढ़ेगी
25: और आसमान के चांद को अपने हुस्न का जलवा दिखाएगी। कितना दिल फरेब मंजर होगा।
4: वादा कीजिए मेरे सरताज, ये महल जरूर बनेगा, वादा कीजिए।
25: जो हमारे दिलों में है उसे एक दिन हम जमुना की रेत पर सजा देंगे, सारी दुनिया हमारी मोहब्बत के नूर से रोशन हो जाएगी।
4: आमीन
25: सुम आमीन।
0: वक्त बीता, अब बच्चों की हंसी से महल गुलजार था। मुमताज महल फिर उम्मीद से हुई। शाहजहां महल के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे।
25: या खुदा, इस आने वाले बच्चे की हिफाजत करना।
1: जिले लाही का इकबाल बुलंद हो, मुबारक हो अलीजा, मलिका हिंद ने खूबसूरत बेटी को जन्म दिया है।
25: बेगम मुमताज महल कैसी है? अरे ये चीख कैसी? सब ठीक तो है ना? हमारी बेगम, हमारी बच्ची।
1: गुस्ताखी मुआफ आलम पना, मलिका हिंद की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने आपको याद फरमाया है, जल्दी चलिए।
25: हाँ चलिए। हकीम मोहतरम, क्या हुआ हमारी बेगम को?
2: सरकार, नब्ज धीमी होती जा रही है, अब दवा का नहीं सिर्फ दुआ का ही सहारा है।
25: ये क्या कह रहे हैं आप? मुमताज, मेरी जाने मन,
4: आगे मेरे सरताज।
25: मुमताज,
4: मेरे आका, बेटा रहे कि हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे।
25: हमारा साथ जिंदगी भर का है जाने, जो आखिरी सांस तक खत्म नहीं होगा। बेगम, बेगम आप ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको, हम दुआ करेंगे।
4: दिल में एक तमन्ना है मेरी सरताज।
25: हाँ, हाँ बोलिए, आपकी हर ख्वाहिश हमारा वादा है, कहिए ना।
4: आप हमारी मोहब्बत की एक ऐसी आराम का तामीर करें जहाँ हम अपने महबूब की याद में कयामत तक सुकून से सो सके।
25: मुमताज,
4: वादा कीजिए।
25: मुमताज,
4: वादा कीजिए।
25: कैसे कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? मुमताज, मुमताज, मुमताज, सुनिए, मुमताज, मुमताज।
0: मुमताज की मौत के बाद शाहजहां पत्थर हो गए, उन्हें खुद का होश ना रहा। 2 साल बीत गए। मातम में डूबे शाहजहां जब महल से बाहर आए तो बालों में वक्त से पहले ही सफेदी आ गई थी। एक दिन शाहजहां को अपनी महबूबा मुमताज से किया हुआ वादा याद आया। उनकी बुझी बुझी आंखों में चमक आ गई, उन्हें जीने का मकसद मिल गया। उन्होंने अपने वजीरों और अमीरान को बुलाया।
25: वजीरे आला, हम जमुना किनारे अपनी बेगम मुमताज की याद में एक आला ख्वाबगाह बनाना चाहते हैं, जो अपनी मिसाल खुद हो।
3: आली जा, अब हुक्म दीजिए, क्या करना है?
25: हमने और बेगम ने कुछ सोचा था, आइए आपको बताते हैं।
0: जब उन्होंने उस ख्वाबों के महल का खाका बताया तो वजीरों और अमीरान के होश उड़ गए।
3: आलीजा, गुस्ताखी मुआफ, आप जो चाहते हैं वो कैसे मुमकिन होगा?
25: क्यों, क्या हुआ?
3: जहाँ बना जितना संगमरमर इतनी ऊंची इमारत को बनाने में लगेगा वो आएगा कहाँ से? तुर्की, ईरानी, फारसी और साथ में हिंदू कारीगर कहाँ से आएंगे? आपने तो कई तहजीबों को एक साथ लाने की बात दिल में ठान ली है, कहीं ये बेतुका तो नहीं लगेगा?
25: हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये हमारी मुमताज के लिए हमारी तरफ से एक अजीम तोहफा होगा और वो हम हर सूरत में

0: आप बताइए, आपको इस ख्वाब के महल को बनाने में कितने कारीगरों की जरूरत पड़ेगी?
1: तकरीबन 20,000 हुजूर। आपने जैसा बताया, पूरे महल का इलाका काफी बड़ा है।
0: हाँ, तो उसे चौकोर टुकड़ों में बांट दीजिए, तब तो आसान होगा। उसका बड़ा इलाका सैरो तफरी के लिए होगा और छोटा इलाका जमुना की तरफ वाला, वहाँ ताजमहल बनेगा।
1: हुजूर, अगर ताजमहल जमुना की तरफ रखेंगे तो उसके पानी से इमारत की नींव को नुकसान पहुँचेगा, उसे दूसरी तरफ बनाना अच्छा रहेगा।
0: नहीं, वही तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने मुमताज से जमुना के किनारे ही महल बनाने का वादा किया था।
1: आलीजा, तो फिर पहले लाल पत्थर वाला एक बड़ा बाड़ा बनाएंगे, जिसमें अगर बाढ़ का पानी घुसे भी तो बाहर निकल जाए, फिर उसके ऊपर ताजमहल बनाएंगे।
0: वाह, क्या बात है, चलिए यहीं से काम शुरू कीजिए।
1: बेहतर है जनाब।
2: अब शुरू हुई मुमताज महल के ख्वाबों की ताबीर एक ताजमहल की शक्ल में। तीन तरफ दरवाजे, एक तरफ ताज, बीच में बागीचा और उसमें भी कई फव्वारे। कारीगरों को काम पर लगाया गया, सामान पहुंचने लगा और खजाने के दरवाजे खोल दिए गए।
3: सरकार, मखराना और पंजाब से संगमरमर आ गया है।
1: ठीक है, बुखारा के कारीगरों को बुलाइए और उनसे कहिए नक्शे के मुताबिक उनकी कटाई और घिसाई करें, और मीनारों पर लगने वाला पत्थर गोलाई से लगाया जाएगा। और हाँ, बड़े गुंबद के बगल के चार गुंबद चारों तरफ से एक जैसे दिखने चाहिए।
2: संगे मरमर को तराशने वाले इटली से, उन सफेद पत्थरों पर नक्काशी बनाने वाले बुखारा से, और कुरान शरीफ की आयतें लिखने वाले ईरान से बुलाए गए। काम जोर शोर पर था, खूबसूरत इमारत की तामीर होने लगी थी। तभी अचानक एक दिन शाहजहां की बड़ी बेटी जहां आरा आग से झुलस गई, और कुछ दिन बाद जब उनका बेटा औरंगजेब दक्खन से लौटा तो शाहजहां गुस्से से दिल मिला उठे।
4: औरंगजेब, अब आए हो, तुम्हारी बहन को चले हुए इतने दिन हो गए, अब फुर्सत मेरी है तुम्हें।
5: क्या करें अब्बा जान, हम वहाँ काम काज में बहुत उलझे हुए थे।
4: तुम्हें अपनों का ख्याल है कि नहीं? हद है बदसलूकी की और बेअदबी की, तुम ऐसे नहीं समझोगे। आज से दक्खन की सूबेदारी तुमसे छीनी जाती है, और अगले हुक्म तक सल्तनत से मिलने वाले सारे ऐश आराम तुम्हें नहीं मिलेंगे।
5: हम जानते हैं अब्बा जान, आप हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। आप दारा शिकोह को सल्तनत सौंपना चाहते हैं।
4: हाँ, क्यों ना चाहें, वो हमारा सबसे बड़ा बेटा है और तख्त पर उसी का हक है। अब तुम जा सकते हो।
5: नहीं अब्बा जान, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब्बा जान,
2: औरंगजेब के दिल में ये बात बुरी तरह चुप गई, और वो खामोश बैठने वालों में से नहीं था। पर इस बात से बेखबर शाहजहां का सारा ध्यान अपनी मुमताज के ख्वाबों का महल बनाने में लगा हुआ था।
4: लाहौरी, इसकी मीनारें राजस्थानी लगनी चाहिए, और इसका बड़ा गुंबद पर्शिया के गुंबदों जैसा दिखना चाहिए। बाहर की सारी नक्काशी साफ साफ हो, और अंदर भी कारीगरी बहुत महीन होनी चाहिए।
1: जी हुजूर, वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है।
4: मुमताज, इस ताजमहल के साथ हमारी मोहब्बत फिर से जवान हो रही है। लगता है आप हमारे आसपास ही हैं, हमारी मोहब्बत का मुजस्समा परत दर परत हमारी नजरों के सामने बन रहा है। जमुना की खामोश ठंडी रेत पर अजीमुशान फनकार और बेहतरीन संगतराश हमारे वादे को हकीकत का चेहरा दे रहे हैं, और आपके ख्वाबों का महल बनता जा रहा है। मुमताज, काश आप हमारे साथ हमारे पास होती।
2: इधर ताजमहल अपनी शक्ल इख्तियार करने में लगा था, पर उधर अपने अब्बा जान के बर्ताव से नाराज औरंगजेब तो कुछ और ही ठान कर बैठा था। आगे क्या हुआ ये हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। फिर हाजिर होगा आपका दोस्त, तब तक आप सुनते रहिए भारत की अमर कहानियाँ।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत

0: अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: नहीं।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
3: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
3: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
4: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
7: अब तक आपने सुना, जहांगीर के बेटे शहजादा खुर्रम उर्फ शाहजहां अपनी महबूबा से कैसे मिले, कैसे उनसे निकाह हुआ, शाहजहां की सौतेली माँ नूरजहां कैसे उनके खिलाफ हुई और कैसे अपनी महबूबा अर्जुमन बानो को उन्होंने मुमताज का खिताब दिया, और फिर एक दिन अचानक मुमताज उनसे हमेशा के लिए जुदा हो गईं, जिनकी याद में शाहजहां ने एक अनोखी इमारत बनवाना शुरू की, उस इमारत का नाम रखा ताजमहल। लेकिन शाहजहां से नाराज बेटे औरंगजेब की तरफ से हो रही बगावत को शाहजहां ने कोई तवज्जो नहीं दी। अब आगे उस बगावत से बेखबर शाहजहां अपनी मुमताज और ताजमहल में ही खो गए। वक्त खिरामा खिरामा गुजरता रहा। एक दिन शाहजहां को एक खबर मिली।
8: शहंशाह, शहजादे औरंगजेब मुल्तान में अफगानिस्तान के कबायलियों से हार गए हैं।
9: हम जानते थे वो अपने गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनता। किसने कहा था कि जबरदस्ती अपनी सरहदें बढ़ाओ, उसे तक्खन का सूबेदार बनाकर भेज दिया जाए। वो वही ठीक है।
8: जो हुक्म आलीजा।
7: उधर तकरीबन 20 साल बाद ताजमहल अपनी तामीरी के आखिरी दौर में पहुंच रहा था।
8: आज हम बड़े गुंबद पर वो खंबा लगा रहे हैं जिस पर मुगलिया सल्तनत का निशान है।
9: बहुत अच्छे, चलिए हम भी देख लेते हैं।
8: जरूर जरूर आलीजा, चलिए आइए।
7: जब शाहजहां दरवाजा रुदा यानी ताजमहल के पहले लाल दरवाजे तक पहुंचे, तो संगे मरमर से तराशे हुए ताजमहल को देखकर वो दंग रह गए।
9: सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत है ये। लगता है जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई है। बेमिसाल, उम्मीद से कहीं बढ़कर। फनकारों को तो दाद देनी चाहिए। चश्मे बद्दूर, वाह।
8: आई आलीजा, अब चार बाग से गुजरते हुए हम आपको ताज तक लिए चलते हैं। ये देखिए, ये सारे फव्वारे जमुना के पानी से चलते हैं। हुजूर हुजूर, वहाँ देखिए, वहाँ ताज के एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ मेहमानों के लिए जगह है। आइए आलीजा, अंदर चलें। हुजूर, यह है खूबसूरत जाली और नकाशियों के बीच आपकी मल्लिका मुमताज महल की कब्र। मगर असली कब्र तो नीचे तहखाने में है हुजूर, जहां हर तरफ खूबसूरत नकाशी है।
9: अल्लाह, इतनी महीन कारीगरी वाकई काबिले तारीफ है। हमारी मुमताज तो यहाँ के हर नक्श में समाई है।
8: आइए जहांपनाह, अब जमुना के उस पार चले।
0: अरे जरा नाव लाना।
9: मुमताज, ये वही जमुना का किनारा है जहाँ हमने आपसे एक खूबसूरत इमारत बनाने का वादा किया था। अगर आप आज यहाँ होती तो देखती कि इस पार से दो दो ताज दिखाई पड़ते हैं, एक जमुना के पानी में पड़ती परछाई और दूसरा नजरों के सामने। हमने अपना वादा पूरा किया मुमताज।
7: अभी ताजमहल का ख्वाब पूरा ही हुआ था कि बादशाह शाहजहां को एक खबर मिली। शहजादे औरंगजेब ने अपने बड़े भाई शहजादा तारा शिकोह के साथ जंग छेड़ दी।
9: लिल्ला, इस नामुराद औरंगजेब का हम क्या करें? ये गुस्ताख हमारी इस जन्नत को जहन्नुम बनाकर ही छोड़ेगा।
7: कुछ दिन बाद औरंगजेब अपने सभी भाइयों पर फतेह हासिल करके बादशाह शाहजहां के पास पहुंचा।
10: आलमपना का इकबाल बुलंद हो, शहजादे औरंगजेब तशरीफ लाए हैं।
9: आने दो उन्हें।
11: अब्बा हुजूर, आपसे एक गुजारिश है, अब सल्तनत की बागडोर हमें सौंप दी जाए। अगर आप बाइज्जत हमें ये तख्त नहीं देंगे तो हमें इसको हथियाने के दूसरे तरीके भी आते हैं।
9: गुस्ताख, तुम्हारे इतनी जुर्रत, सिपाहियों,
11: चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है अब्बा हुजूर। अब ये हमारे वफादार हैं। सिपाहियों, इन्हें कैद कर लो।
9: दगाबाज, छोड़ो हमें।
7: उसके बाद औरंगजेब बादशाह बन बैठा और शहंशाह शाहजहां को आगरा किले में नजर बंद करके ऐसी जगह रखा जहां के झरोके से उन्हें ताजमहल दिखता था। अब दिन रात बेबस लाचार शाहजहां टिकटिकी लगाए ताजमहल को देखते रहते। इश्क की निगाह ने पत्थर को जानदार कर दिया था।
9: हमारी तनहाई के साथी सिर्फ आप हैं मुमताज, और ये ताजमहल जहां आप हमारा इंतजार कर रही हैं, ये वो आईना है जिसमें आपका ही अक्स है। नजर अब धुंधला रही है, सामने ताजमहल झिलमिला रहा है। लगता है अब ये सफर पूरा होने को है। हम खुश हैं कि हम आपके पास आ रहे हैं बेगम बानो, आ रहे हैं आपके पास।
7: और इसी तरह अपनी बूढ़ी आंखों को अपनी मोहब्बत के शाहकार पर टिकाए एक दिलदार आशिक, एक अजीम और शान शहंशाह शाहजहां ने आगरा किले में आखिरी सांस ली और अपनी महबूबा से हमेशा हमेशा के लिए जा मिले। किसी शायर ने सच कहा है, ताज एक जिंदा तसव्वुर है किसी शायर का, जिसका अफसाना हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं। इसके आगोश में आकर ये गुमा होता है, जिंदगी जैसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। सभी मोहब्बत करने वालों को ताज महल का सलाम। बस इसी खुशनुमा याद के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते इतिहास की एक और दास्तान लेकर हाजिर होगा आपका ये दोस्त। आप सुनते रहिए भारत की अमर कहानियां।
12: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
12: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
13: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
14: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
15: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
6: कॉल करें 70705763 या 70705042, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
16: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
17: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
16: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
17: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
16: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
18: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
19: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
18: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
19: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डिरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
18: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5, हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
20: दो हस्बैंड जी,
21: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
20: और लाइट बिल के
21: अब 0 रुपए कैसे दूं?
20: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
21: पक्का।
22: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना,
1: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
22: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
23: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also we are working.
22: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
24: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
22: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइन की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेजिडेंट ऑफ म्यांमार।
22: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है और उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
4: बीएसएफ के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
22: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 30 स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वह भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
7: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
22: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्यभर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजीलॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रीवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मानसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा, हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
22: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
10: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
10: कहाँ पर?
11: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल छवही खास गोपालगंज,
10: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
11: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
10: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
12: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
13: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
14: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
13: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
25: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
26: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
27: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
28: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
29: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
30: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
29: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
30: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
29: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
31: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
32: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
31: तो देर मत कीजिए,
32: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
8: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
10: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64498 पे।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
5: और 90-97-61-60-02।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
10: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
11: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
12: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
10: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
10: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
12: कॉल करे 87-894-18744।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
7: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
7: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
8: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
9: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
8: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
9: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
9: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
9: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: समाचार। प्रदेश में आंधी, बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइन आज 5 दिवसीय भारत दौरे के क्रम में बोधगया आ रहे हैं। महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राज्य सरकार ने सरकारी बसों के किराए में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की। बढ़ा हुआ किराया 1 जून से होगा प्रभावी। और प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की होगी जांच। 1 जुलाई से शुरू होगा विशेष अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आंधी, बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में कम 13 लोगों की मौत हो गई। हालांकि सरकार ने केवल 7 लोगों की ही मौत की पुष्टि की है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कया में 3, नवादा, पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद में 2-2 लोगों की मौत हुई है। वहीं सारण, खगड़िया, रोहतास और भागलपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन हादसों पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी बारिश के कारण सब्जी, लीची और आम की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई। गया और सिवान में ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हुआ। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान के सिसवन में सबसे अधिक 135.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं गोपालगंज के फोड़े में 90.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस बीच विभाग ने आज भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है।
1: दिनांक 30 मई दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों के अनेक स्थानों, उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों में वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गरज बिजली गिरने की संभावना है। बांका और भागलपुर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति के सर्वे का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित किसानों को समुचित राहत दी जा सके। प्रदेश में जून महीने के दौरान सामान्य से कम बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से जारी मॉनसून बुलेटिन में कहा गया है कि जून से सितंबर तक सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में मॉनसून के आगमन में भी 1 सप्ताह का विलंब हो सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइन आज अपने 5 दिवसीय भारत दौरे के क्रम में बोधगया आ रहे हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन ऑंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद रहेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राज्य सरकार ने सरकारी बसों के किराए में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की है। बढ़ा हुआ किराया 1 जून से प्रभावी होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
3: परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 50 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 15%, 100 किलोमीटर तक के लिए 14% और 150 किलोमीटर तक के लिए बस किराए में 13% की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 12%, 250 किलोमीटर तक के लिए 11% और 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए 10% किराए में वृद्धि हुई है। साधारण बस सेवा में 50 किलोमीटर तक यात्रा करने पर अब प्रति किलोमीटर किलोमीटर ₹1.73 किराया देना होगा। पहले यह दर ₹1.50 थी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: इधर परिवहन विभाग ने सिटी बसों के किराए में भी 15% तक की बढ़ोतरी की है। प्रदेश के मठ और मंदिरों की जमीन से अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए विशेष सेल बनाकर अभियान चलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज करने के साथ ही समन्वित तंत्र विकसित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन भी मौजूद थे। सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों के निपटारे के लिए सहयोग कोषांग का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के अपर सचिव अखिलेश कुमार सिंह को नोडल पदाधिकारी और कोषांग प्रभारी बनाया गया है। सहयोग शिविर में आने वाले आवेदनों की मॉनिटरिंग, समन्वय और शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की गई है। राज्य सरकार के कर्मियों के कैशलेस चिकित्सा योजना से जुड़ने पर उनके चिकित्सा भत्ता में कटौती होगी। ऐसे कर्मियों को प्रतिमाह 10% ही चिकित्सा भत्ता मिलेगा। वहीं पेंशन भोगियों को इस योजना से जुड़ने पर 1 माह की पेंशन राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार राज्य स्वास्थ्य योजना की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश वित्त विभाग के परामर्श के बाद जारी की जाएगी। दरभंगा के तोनार में मखाना प्रसंस्करण इकाई की स्थापना होगी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की परियोजना समाशोधन समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 27,44,00,000 रुपए की लागत आएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। राज्य सरकार ने सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की जांच कराने का फैसला किया है। यह जांच अभियान 1 जुलाई से शुरू होगा। एक महीने तक चलने वाले अभियान के तहत विद्यालयों में आधारभूत संरचना, शिक्षकों की उपलब्धता, नामांकन, छात्र सुविधाओं और अन्य निर्धारित मानकों की जांच की जाएगी। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम और बच्चों की मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा नियमावली के अनुपालन की भी जाँच की जाएगी। शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह कुंजियाल ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र भेजा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया गया है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800118004 पर संपर्क कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विधानसभा की कई समितियों का पुनर्गठन किया है। पूर्व मंत्री मंगल पांडे को प्राक्कलन समिति का सभापति बनाया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति तथा कृषि उद्योग विकास समिति का सभापति बनाया गया है। वहीं अमनौर विधायक कृष्ण कुमार मंटू को आचार समिति का सभापति मनोनीत किया गया है। तेलंगाना विधानमंडल के पदाधिकारियों का दल अध्ययन दौरे पर बिहार विधानसभा और विधान परिषद पहुंचा। दल ने दोनों सदनों की कार्यप्रणाली समझने के लिए विधानसभा और विधान परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही इस दल ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। किशनगंज के पेठिया प्रखंड स्थित मिर्जापुर गांव से एक युवक को हिरासत में लेकर उससे लंबी पूछताछ भी की गई। हालांकि पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के टेका बिघा सिरसी टाल में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरभंगा जिले के लहरियासराय थाना क्षेत्र के नाका नंबर 6 के पास पुलिस ने लगभग 25 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले के बरबीघा से 3 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से रुपए ठगते थे। जमुई जिले के चरखा पत्थर थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में पुलिस और SSB ने सर्च अभियान चलाकर भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। शिवहर की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी बिट्टू कुमार को 10 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर RPF की टीम ने विक्रमशिला एक्सप्रेस से 4 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया है। सभी बच्चों की उम्र 11 से 15 वर्ष के बीच बताई जाती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की मोतिहारी शाखा द्वारा 6 जून को मेगा कृषि ऋण आउटरीच कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरित किए जाएंगे। IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच कल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बेमौसम बारिश ने कहर बरपाया, राज्य के 8 जिलों में 18 की मौत, कई झुलसे। प्रभात खबर ने लिखा है, बिहार में आंधी पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई जगह पेड़ गिरे, फसलों को भी नुकसान। दैनिक जागरण लिखता है, बस का सफर हुआ महंगा, 10-15% तक बढ़ा किराया। दैनिक भास्कर ने लिखा है, राष्ट्रपति से मिले मुख्यमंत्री, तिलका मांझी की प्रतिमा का अनावरण करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस जारी। आज अखबार ने लिखा है, वैभव पर भारी पड़ा गिल, गुजरात तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आंधी बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंट हलाइन आज 5 दिवसीय भारत दौरे के क्रम में बोधगया आ रहे हैं। महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राज्य सरकार ने सरकारी बसों के किराए में 10-15% तक की बढ़ोतरी की। बढ़ा हुआ किराया 1 जून से होगा प्रभावी। और प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की होगी जांच, 1 जुलाई से शुरू होगा विशेष अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रमजिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
7: सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
10: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
9: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
10: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
9: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
10: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
11: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
9: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड गोपालगंज।
12: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 80029494 80029494 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
13: हेलो।
14: हेलो, नमस्ते मैम।
13: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
14: मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ, प्रयागराज से। मैम
13: जी, कैसे हैं मनोज जी?
14: ठीक है मैम
13: जी। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है मनोज जी?
14: मैंने अभी तो ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया है
13: जी। और से बताइए, घर परिवार आपका कैसा है?
14: परिवार तो सही है, जो है पापा है, पापा है दुकान रखे हैं और बाकी घर परिवार तो अभी सही है। आगे हम जो है कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं बीएड के लिए। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब बीएड के लिए सोच रहे हैं।
13: बिल्कुल बढ़िया है, करिए। और अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
14: पापा का नाम है अंजित सिंह एंड मम्मी का नाम है राम दुलारी देवी
13: जी। तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
14: यस मैम
13: जी।

0: तो मनोज जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: यस मैम।
0: भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? भारत में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? ऑप्शन ए कॉफी का, बी तिलहन का और सी गेहूं का। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम गेहूं।
0: प्योर है
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: यस मैम।
0: ओके तो चलिए मनोज जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी गेहूं को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा तिलहन। सही उत्तर होगा तिलहन। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन पर कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: रवि कुमार बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं रवि जी?
2: ठीक हूँ मैम।
0: जी तो क्या हो रहा था अभी?
2: बैठे थे।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है रवि जी आपसे? आपकी
2: 12वीं पास है।
0: उसके बाद पढ़ाई जारी है कि बंद हो गया है?
2: जारी है मैम, अब ग्रेजुएशन में एडमिशन।
0: अभी लिए नहीं है?
2: नहीं।
0: ओके तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: जी
0: जी, मम्मी पापा का नाम बता दीजिए अपना।
2: मम्मी का नाम निर्मला देवी और पिताजी का नाम दिनेश।
0: जी तो ले पहला प्रश्न।
2: जी
0: जी,

0: विजय, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी।
0: कौन सा ऑप्शन?
1: ऑप्शन सी तेलुगु।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तेलुगु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971 और ऑप्शन सी 1991। आपका समय शुरू होता है अब। श्योर है?
1: जी।
0: लॉक कर दो?
1: जी जी
0: जी। तो चलिए रवि जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 1971 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो तीसरा प्रश्न आपसे ये है, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां, बी 86वां और सी 93वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 86 संशोधन को लॉक करते हैं। और बताएं कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आज आपका चौथा प्रश्न ये है, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226 और सी अनुच्छेद 368। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए
1: 32।
0: चोर है?
1: जी।
0: ओके। तो चलिए आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, बिजली का बल्ब सर्वप्रथम कब बना था? ऑप्शन ए 1821, ऑप्शन बी 1879 और ऑप्शन सी 1785। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन एक बार और बोलिए।
0: ऑप्शन ए 1821, बी 1879 और सी 1785।
1: 1879 फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: नहीं मैम, लॉक के साथ।
0: ओके। तो चलिए रवि जी, आपके पांचों प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी 1879 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचों प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, टेलीफोन का आविष्कार सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन ए 1874, बी 1875 और सी 1876। आपका समय शुरू होता है अब।
1: चोर
0: है
1: जी,
0: लॉक करूं?
1: जी।
0: तो चलिए रवि जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1876 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन ए 3800 संशोधन, बी 4200 संशोधन और सी 4400 संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: श्योर
0: है
1: जी,
0: लॉक करो?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए रवि जी, आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 4200 संशोधन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 4400 संशोधन।
1: ओके,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिपीट कॉन्टेस्ट में कॉल की।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: एडमिशन फ्री।
4: कहाँ पर?
3: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
4: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
3: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
4: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
11: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
11: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994121। 80029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो
12: हेलो,
0: स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में।
12: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
12: नाम अनुराधा गुप्ता है, थाने से बोल रहे हैं।
0: नाम एक बार और बताइए।
12: अनुराधा गुप्ता।
0: अनुराधा गुप्ता
12: जी।
0: जी कैसे हैं अनुराधा जी?
12: हम ठीक हैं, आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था अभी?
12: कुछ नहीं, खाना बना रहे थे दोपहर में।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
12: जी मैं 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन में अब गई हूँ।
0: तो आपका एम क्या है, कुछ सोचा है आपने?
12: टीचर का है, बस देखते हैं आगे क्या हो रहा है।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी?
12: जी
0: जी। तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
12: जी
0: जी, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
12: जी, पापा का नाम प्रभुनाथ गुप्ता है और मम्मी का नाम धर्मशीला देवी है।
0: जी, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।

0: राजा जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन सी फिनलैंड। आपका समय शुरू होता है अब।
1: फिनलैंड, ऑप्शन सी
0: फिनलैंड।
1: जी
0: श्योर है?
1: देखिए श्योर नहीं है
0: तो लॉक करो।
1: जी
0: जी तो चलिए अनुराधा जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी फिनलैंड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: अब से आपका दूसरा प्रश्न ये है
1: जी।
0: भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1911, बी 1921 और सी 1931। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उन्नीस सौ इक्कीस। जी
0: श्योर है?
1: देखिए श्योर नहीं है।
0: ओके चलिए तो दादा जी आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 1921 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी गलत है। सही उत्तर होगा 1911।
1: ठीक है।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
2: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मैं गुलाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलाम जी?
2: बढ़िया है, आपने सुनाइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है गुलाम जी आपकी?
2: क्या मैम?
0: पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप?
2: मैट्रिक तक किए हैं मैम।
0: मैट्रिक तक किए हैं?
2: जी जी।
0: तो अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए आप।
2: मेरे अबू का नाम है अब्दुल वाहिद अंसारी, मम्मी का नाम है बीबी उम्मत।
0: लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी जी
0: जी

0: तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त और ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी मैम बी होगा,
0: श्रीगुप्त।
1: जी
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं है लेकिन लगता है।
0: ओके तो लॉक करें?
1: जी
0: जी। तो चलिए गुलाम जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी श्रीगुप्त को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, जल ही जीवन है किससे जुड़ा नारा है? जल ही जीवन है किससे जुड़ा नारा है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी शिक्षा और ऑप्शन सी विज्ञान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विज्ञान होगा मैम।
0: विज्ञान होगा
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है लेकिन देखते हैं कोशिश से।
0: ठीक है तो लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए गुलाम जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विज्ञान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा जल संरक्षण। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
11: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
12: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
11: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड गोपालगंज।
13: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
11: कॉल करें 8570-32042 पे।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से? जी कैसे हैं जोहार जी? तो पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी?
14: अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, दसवीं क्लास में है।
0: किस क्लास में है?
14: दस क्लास में, टेंथ में।
0: अभी टेंथ में पढ़ते हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है?
14: अच्छी चल रही है मैम।
0: जी तो कुछ सोचा है आगे क्या करना है पढ़ाई कंप्लीट करके?
14: नहीं मैम अभी नहीं सोचे हैं।
0: अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए।
14: अम्मी का नाम कहा कैसा खातून और अबू का नाम मेरा जान सॉरी।
0: जी लिया गया आपसे आज का पहला प्रश्न।
14: यस मैम।
0: ओके

0: निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? ऑप्शन ए पैराफिन मोम, ऑप्शन बी जुजुबा मोम और ऑप्शन सी मधुमोम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी को फिक्स कीजिए मैम।
0: ऑप्शन बी जुजुबा मोम।
1: यस मैम।
0: श्योर है?
1: नहीं मैं श्योर नहीं हूँ।
0: ये तो लॉक करूं?
1: यस।
0: ओके तो चलिए झार जी, आपके पहले प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी जुजुबा मोम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा पैराफिन मोम।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल किया। हेलो।
2: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: नाम सलोनी कुमारी, बंजारी ब्रह्मस्थान गोपालगंज से।
0: ठीक कैसी है सलोनी जी?
2: ठीक हूँ
0: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
2: कुछ नहीं, पढ़ाई हो रही थी।
0: जी किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: बीए।
0: बीए चल रहा है? कौन सा ईयर?
2: फाइनल ईयर।
0: फाइनल ईयर चल रहा है?
2: हाँ।
0: तो कैसे चल रही है तैयारी?
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए बढ़िया है। तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: हाँ
0: ओके।

0: नाम बता दीजिए मम्मी पापा का अपना।
1: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है सुंदर लाल का।
0: ओके, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है सलोनी जी, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका
1: क्वेश्चन बोलिएगा।
0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु।
1: तमिल।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करो?
1: हाँ लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी तमिल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा तेलुगु।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कॉन्टेस्ट में कॉल की।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में।

0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
1: जी, मैं बिमल कुमारी बोल रही हूँ।
0: जी, कैसी हैं बिमल जी?
1: मैं ठीक हूँ मैम। अभी फोन तो चार बार की, रिंग हो गए, कट कट गया।
0: जी, मैं कॉल रिसीव कर रही थी और कॉल कट जा रही थी।
1: अच्छा, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है।
0: जी जी, हो सकता है। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है जी बिमल जी आपकी?
1: ग्रेजुएशन है।
0: उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि छोड़ दिए हैं?
1: अभी तो छूट गया है मैम।
0: अच्छा अच्छा, तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
1: मम्मी के नाम प्रभावती देवी और पापा जी के नाम श्री रामा जी प्रसाद है।
0: जी, तो लिया जाए आज का पहला प्रश्न आपसे।
1: जी मैम।
0: तो चलिए, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है बिमल,

0: टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन लगी वेयर्ड, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन और ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका समय स्रोत है अब।
1: ऑप्शन ए जॉन लोगी।
0: जॉन लोगी वेयर्ड
1: जी। वेयर्ड
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है, देखते हैं।
0: लॉक कर दो?
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जॉन लोगी वेयर्ड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया और सी पेरिस। आपका समय स्रोत है अब।
1: दिल्ली।
0: प्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: चलिए तो विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ब्राजीलिया।
1: ब्राजीलिया।
0: हाँ। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिंग के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बताइए अपना।
2: राजन कुमार बोल रहा हूँ थामे से।
0: राजन
2: जी।
0: जी क्या हाल चाल है राजन जी?
2: ठीक है।
0: ठीक, तो क्या करते हैं आप?
2: अभी हम ग्रेजुएशन पास करके बीएड कर रहे हैं।
0: जी जी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कल ही आया है।
0: तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी पूछिए।
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी मेरे मम्मी पापा का नाम है श्री रामा जी प्रसाद, मम्मी का नाम है प्रभावती देवी।
0: जी। तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: बिजली का बल्ब सर्वप्रथम किसने बनाया? बिजली का बल्ब सर्वप्रथम किसने बनाया? ऑप्शन ए माइकल फराडे, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन और ऑप्शन सी जेम्स वाट। आपका समय शुरू होता है।
1: ऑप्शन बी होगा, थॉमस एलवा एडिसन।
0: सही श्योर है आप?
1: जी जी।
0: लॉक कर दूं?
1: जी लॉक कर दीजिए।

0: ओके, तो चलिए राजन जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थॉमस एडिसन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत ने 2025 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु नया मिशन घोषित किया? भारत ने 2025 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु नया मिशन घोषित किया? ऑप्शन ए मंगलयान 2, ऑप्शन बी नेपच्यून मिशन और ऑप्शन सी शुक्रयान 1। आपका समय शुरू होता है। आप
1: मंगलयान को लॉक करिए।
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं है, लेकिन अभी न्यूज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत 50-50 है।
0: अच्छा, तो लॉक करूं?
1: जी मैम लॉक कीजिए।
0: चलिए, तो राजन जी आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए मंगलयान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा शुक्रयान 1।
1: ओके।
0: हेलो प्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: आज से तुम कोई गलत काम नहीं करोगे और वादा करो हमेशा साथ निभाओगे।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटी का, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
7: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
8: मैं सोनू दुबे पार्टी से बात कर रहा
7: हूँ। ठीक, कैसे हैं सोनू जी?
8: बढ़िया, अपना बताइए।
7: मेरा भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था अभी?
8: ड्यूटी।
7: चलिए जी, आपसे आज का पहला प्रश्न।
8: जी जी
7: जी,

0: तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए सोनू जी।
1: मम्मी का नाम कलिंदा देवी और पिता जी का नाम सोनू जी।
0: ओके, तो सोनू जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है
1: जी,
0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका समय शुरू होता है अब।
1: तेलुगु को फिक्स करें।
0: प्योर है?
1: प्योर नहीं हूँ, कंफ्यूज है तमिल और तेलुगु में
0: जी।
1: ऑप्शन सी को फिक्स कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी तेलुगु को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूशांति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूशांति से हुई है? ऑप्शन ए तेथिस, ऑप्शन बी शिवालिक और ऑप्शन सी गोदावरी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए फिक्स कीजिए।
0: ऑप्शन ए
1: जी।
0: प्योर है?
1: जी प्योर हूँ।
0: ओके, तो चलिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए तेथिस को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी
0: जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 86वां संशोधन और सी 93वां संशोधन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्यों
0: है?
1: जी मौलिक शिक्षा का नाम है
0: जी। हाँ, शिक्षा का अधिकार मौलिक।
1: हाँ, 86वां
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 86वां संशोधन लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: चौथा प्रश्न आपसे ये है, मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? मौलिक अधिकारों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 226 और सी अनुच्छेद 368। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन एक बार और बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, बी है अनुच्छेद 226 और सी है अनुच्छेद 368।
1: 368 फिक्स कीजिए।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सोनू जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो क्विज कॉन्टेस्टेंट कॉल से।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
7: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान, संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 1100 1।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
3: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
2: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
3: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: झलक रही है।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9520384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे। तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22-567 या 97-714-86-164।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, अभी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवा सिर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क 99-393-65-930।
10: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
11: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
10: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
8: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
10: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: जानकारी के लिए कॉल करें 99-55-94-94-53
10: और 90-97-61-60-02।
12: Excuse me boss, you have a text message।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो एमजीएम 94.4 FM पे समय 9:21 हो रहे हमारी स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है, ये बातें आप सभी के बीच हर रोज़ बताई जाती है कि पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। यहाँ पे कुछ से मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो आप भी मैसेज करें हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। आगे मैसेज है और लिखा गया है कि किसी ने फूल से पूछा, जब तुम्हें तोड़ा गया तो दर्द नहीं हुआ। फूल ने जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द ही भूल गया। सुनो भाई, नमस्ते नमस्कार प्रणाम, कल का मेरा सॉन्ग नहीं चला, आज बजा दीजिएगा। बिल्कुल बजाने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं शिव सागर दीवाना जम्मू एंड कश्मीर से, और मेरा सॉन्ग है कल वाला। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है, जय माता दी। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। और भी मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो, मैसेज करती हैं सोनी गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं, मैं शिल्पी बिदबर्मा से और मुझे सॉन्ग सुनना है, लोर अखिया से बहे जैसे दरिया रे।

बिल्कुल आपका स्वागत है। गाने का फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि विपुल सिंह आज गाना सुनना है अंटी नंबर वन का टाइटल ट्रैक। और चलिए आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल आप बन रहे हमारे साथ। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा, लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, हम भी हाजिर हैं, कैसे हैं? वीरेंद्र गुप्ता के खरिया रोकसोल नेपाल बॉर्डर से तो बिल्कुल बढ़िया है। और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं, अब गाने के फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और पहले गाने के फरमाइश पूरी करते हैं शिव सागर दीवाना जी की, और सुनते हैं इनकी फरमाइश। उस लड़की पे दिलाया है जिसने मुझे सताया है।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का क्या हो गया है जी। अरे कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद सुनो भैया मेरा गाना बजाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मैं रामा जी प्रसाद थावे राजन मार्केट से और सोनू जी को नमस्ते गाना सुनना है, फूल भेजा है खत में फूल नहीं मेरा दिल है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, एक एक करके सबकी फरमाइश प्ले हो रही है, अभी पहले गाने ही सुने हम सभी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और मैसेज में लिखा गया है कि क्या बात है भाई, और मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खिखरिया रक्सल नेपाल बॉर्डर से और कहते हैं कि जो लड़की आपको सताया और जो लड़के लड़की को सताया एक दूसरे पे प्यार आया तो अब बाकी क्या है, आगे बढ़े और एक दूसरे से शादी करें। बिल्कुल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मस्त सॉन्ग, मैसेज करती हैं निशा भारती ओझोलिया उसका गांव प्रखंड से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, अब अगली गाने की फरमाइश यहां पे पहुंचा हुआ है और मैसेज करती हैं शिल्पी बिदबरमा से और गाने की फरमाइश करती हैं लोर अखिया से बहे जैसे दरिया रे जिनेगिया बेजाएं हो गई पवन सिंह की आवाज़ में। तो सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
7: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
6: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन मटन दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा बर्गर चाट गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
7: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
6: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड गोपालगंज,
7: जहां हर निवाला कहे वाह।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
11: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमझिम 90.4 FM पे सोशल लाइफ स्मैश फरमाइश का। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, थैंक्स, बाय, गुड नाइट, आपको धन्यवाद रेडियो रेमझिम सुनने के लिए और इस गाने के फरमाइश करने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है रामाजी प्रसाद जी की तरफ से, थावे राजन मार्केट से, और गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है इनके तरफ से, फूल भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। जल्दी से सुना दीजिए प्लीज। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं। और यहाँ पे देख ले कुछ से मैसेज है, और मैसेज में लिखा गया है कि सुपर सॉन्ग पवन सिंह की आवाज़ में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर, मैं परी गोपालगंज से, और मुझे सॉन्ग सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, और लेकिन आपकी फरमाइश जो है इस कदर, तो इस गाने की फरमाइश पूरी नहीं की जाएगी, आप पुराने गाने की फरमाइश करें, हम बिल्कुल पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भैया हम भी हैं। तो बिल्कुल आपका भी मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है, और आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और मैसेज करते हैं रोहित जी देहरादून से, कहते हैं कि टूटा हुआ आईना किसी ने तोड़ा है क्या, मोहब्बत ने किसी को छोड़ा है क्या, तुम क्या हंस रहे हो मेरी शायरी पर, तुम्हारा भी दिल किसी ने तोड़ा है क्या। सोना भाई नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक है ना। बिल्कुल बढ़िया है, आप सभी के बीच उपस्थित हैं और कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, और बारिश इधर भी हुआ है सुबह में, और बारिश जैसा ही मौसम बना हुआ है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और लिखा गया है कि काहे पवन भाई अब बुझाता मैडम ज्योति जी के छोड़ला पे, अभी अपना ली फिर जिनगिया सवर जाई। मैसेज करा था नहीं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अक्सल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और मैसेज करते हैं शिव सागर दीवाना जी, कहते हैं कि शादी भी हो गई है भाई मेरे, जिसने सताया था उसी से, जय माता दी। तो बिल्कुल अब तो झेलते रहिए और मनाते रहिए, उनकी इच्छाओं को पूरी करते रहिए, कुछ नहीं होगा, आगे एकदम आराम से ज़िंदगी कटेगी, बस उनके कहने अनुसार चलना पड़ेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर, समीर आलम जंगलिया से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज, सर प्रणाम, मुझे गाना सुना दीजिए सुभाष राजा का, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और इस मैसेज को करते हैं अंकुश कुमार, अब बढ़ते हैं आगे और रामा जी की फरमाइश को प्ले करते हैं, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो 94.4 FM पे।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमशी 4 FM पे रामा जी की फरमाइश पे सुन रहे थे। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, अंकुश कुमार सर मेरा गाना बजा दीजिए। तो बिल्कुल लेके करके सबकी फरमाइश पूरा करने का कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगली गाने की फरमाइश प्ले होगी। और मैसेज करने वाले विपुल सिंह जी हैं और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, अंटी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक। गाने का बोल देते हैं, बांधी कमरिया से सारी की आई अब अंटी की बारी। तो चलिए, आपकी बारी आ ही गई है, तो आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। और अंकुश जी, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें, फिलहाल गाने के साथ इंजॉय करें अंटी नंबर 1।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
5: ठक ठक
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
11: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
12: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
14: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
7: क्यों, क्या हुआ है?
14: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
14: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
15: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: बिल्कुल आंटी नंबर वन कमाल के सॉन्ग रेडियो रेमसी 90.4 FM सुन रहे हैं और सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यहाँ पे आगे अंकुश कुमार जी की तरफ से गाने का फरमाइश पहुँचा हुआ है, कहते हैं कि गाना बजा दीजिए आज कौन है डैनिया सुभाष राजा के आवाज़ में। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं, लेकिन आप सभी से हम कहते हैं कि निर्गुण भजन और नाथ शरीफ जैसे गाने के फरमाइश आप लोग ना करें तो बेहतर रहेगा, ताकि जो भी श्रोतागण हमारे हैं जो छूट जाते हैं समय की कमी के कारण उनकी फरमाइश हम सुना सकें। यहाँ पे आपकी जो गाने का फरमाइश हम प्ले करने जा रहे हैं वो 10 मिनट के करीब का है, तो हम 10 मिनट तो नहीं सुना सकते हैं, कुछ ही मिनट सुना पाएंगे, फिर अगले श्रोतागण की फरमाइश हम प्ले करेंगे। तो फिलहाल आपके गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।
1: यही दशहरा में एगो डाइन एगो लड़का के जादू टोना से मुआ देतिया, लड़कवा के आत्मा के दुख देतरी। तो देखी वो लड़का के आत्मा वो डाइन से कैसे गुहार करता आ कहता

कभी प्यारे गाने सुनने हम सभी रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे, और दशहरा के गाने हैं, और इस गाने के फरमाइश करने वाले अंकुश जी हैं। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर ये गाना हमने नहीं बोले थे, खैर कोई बात नहीं, ये भी सुपर सॉन्ग। तो बिल्कुल आपने जैसे गाने के फरमाइश किए थे उसी टाइप के हमने गाने सुना रहे हैं, और आगे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। और मैसेज करते हैं रमेश शाह उदंत राय के बंगरा से, और कहते हैं कि हमें भी गाना सुनना है, और गाने के फरमाइश करते हैं हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। और आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं रमेश शाह जी, आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रमजीम 90.4 एफएम पे। यहाँ पे एक मैसेज भी पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि चलिए भाई सुनकर अच्छा लगा कि आप दोनों एक दूसरे को सताए और बराबर प्यार आए और शादी के बंधन में बंध गए, ऐसे ही होना चाहिए। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खेखरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से शिव सागर दीवाना जी के लिए, और कहते हैं आगे कि ई का बजाओ आता नहीं, तो ये गाना के फरमाइश के लिए बानी एगो श्रोतागण बानी जहाँ के नाम बा अंकुश कुमार, और इनके तरफ से ही गाने के फरमाइश पहुँचल डाला। तो अभी हमने के सुनता नहीं जा, फिर आगे हम बढ़ाता नहीं, फिर अगला गाने के फरमाइश प्ले करता नहीं, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रामझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और गाने की फरमाइश कमाल की रही, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। इसी उपरांत एक मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है तो खुशी से टावर पे चढ़ जाइए। फिर पब्लिक तो टावर पे चढ़ जाइए और डिमांड करिए शादी करने की, फिर पब्लिक तो करा ही देंगी शादी आप दोनों की। ये भी बात सही है और ये ट्रेंड चल रहा है। इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर एक्सल नेपाल बॉर्डर से, लेकिन सही मायने तो ये गलत संदेश जा रहा है कि जिद करे और किसी को उलझन में डाले, घर परिवार वाले को, तो ऐसा का नहीं करना चाहिए। आगे मैसेज है और आगे मैसेज गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है। नंदनी गोपालगंज से मैसेज करती हैं और कहती हैं कि हमें भी सॉन्ग सुनना है, प्लीज़ सुना दीजिए। पहली बार मैसेज की हूँ और गाने की फरमाइश करती हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरे बाहों में हो। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे, डेडिकेट करती हैं ऑल रेडियो रिमझिम सुनने वाले को। तो बिल्कुल सब कोई इंजॉय करेगा और समय भी देखे तो समय की समाप्ति की समय हो गई है, शो की समाप्ति की समय हो गई है। तो इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे क्योंकि आगे फिर मैसेज शामिल करने और गाने प्ले करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये गाने थोड़े लंबे हैं तो फुल गाने इंजॉय किया जाएगा। फिर अगले सप्ताह मुलाकात होगी आप सभी से। सुनते रहे रेडियो रामझिम 90.4 FM, जो हमें सुनो दिल से। नमस्कार।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
0: और 90971602।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
1: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
8: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
8: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
8: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
8: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6-575।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-567 या 97-7-14-86-164।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
6: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 90971602।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहाँ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क 99393 65 930।

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहेला सुनी दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
7: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
5: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: सुनो दिल से।

0: ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91 626 64 498 पे।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
2: टॉप भौजी।

0: आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़ दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042-34-03, 62042-34-03।

0: नजर मत लगा देना।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज
3: या अभी कॉल कीजिए 92-99-22-567 या 97-714-86-164।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: Putin is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 international of three-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउन लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
4: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गयाजी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
5: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि उसके साझेदार टीसीएस की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत देरी से हुई। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
7: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
11: ठक ठक।
12: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
14: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
14: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
16: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
15: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
16: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए टायर को चाहिए

0: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
1: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
0: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
1: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
0: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
1: जहां हर निवाला कहे वाह।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87-894-18744।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर।

0: खुरा के सामने NH 27 बंजारी गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
2: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: दिल कहे रे जी।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: Dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, dinda, d

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलते नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: तब भौजी आज सुबेरही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क 99-393-65-930।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: एसटी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसटी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे। सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
10: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
9: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: सुनो दिल से।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।

0: अब जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403 6200042403।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
7: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
8: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
9: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
7: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
10: कॉल करें 87894 18744।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
9: ऑलराइट।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
1: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
1: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
1: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
3: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: कुमार,
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
0: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
0: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
0: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
4: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
2: हमको गाना सुनना है।
1: गाना सुना देंगे।
2: नदिया के पार कौन दिशा में ले चला रे बरहिया।
1: फिर से बोले।
2: नदिया के पार
1: जी
2: कौन दिशा में लेके चला रे बरहिया।
1: ओके, वैसे आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम मनोज कुमार है
1: जी। और आप कहाँ से?
2: हम मुंगेर जिला के ठाकुर से बोल रहे हैं, गोबरा। तीसरा कॉल है, दो दिन हम नहीं लगा सके बीजी थे
1: जी। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: सत श्री अकाल।
1: ठीक ठाक बनाए।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: पहले मैं बोल रहा हूँ बूटा सिंह मान नत्त रोड तलवंडी साबो डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब
0: जी। क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक बने। बहुत बढ़िया, गर्मी बहुत पड़ रही है।
0: अच्छा तो अपना फरमाइश बताइए।
1: जब प्यार की चीजें होता है एक गाना ना कोई भी सुना दी।
0: किसको सुनाना चाहते हैं?
1: ये बने मेरे आए महिंदर भट्टी मंडी गलां तो जगदीश राय गर्ग मानसा तो सतीश मगलानी मलोड़ पर।
0: जी ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रंजी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत
1: ओके ओके।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
9: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
10: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
9: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: यार कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
13: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
12: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
13: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
12: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
13: जहां हर निवाला कहे वाह।
14: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: हेलो,
16: अस्सलाम वालेकुम।
17: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
16: साउंड फिल्म का गाना चला दीजिएगा।
17: कौन सा?
16: साउंड फिल्म लगन लगी।
17: अच्छा, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: थैंक यू मैम।
1: क्या नाम है आपका?
0: अनिल बात कर रहा हूँ, छोटपुर से।
1: अच्छा, क्या हाल है?
0: बस बढ़िया, अपना बताइए।
1: क्या हो रहा है फिर?
0: काम कर रहे हैं अभी।
1: अच्छा, फिर क्या फरमाइश है आपकी?
0: फरमाइश है कुमार सानू का, कोई भी गीत बजा दीजिएगा।
1: आप अपने पसंद से बता दें।
0: मेरा पसंद?
1: जी,
0: मेरे पसंद से बजा दीजिएगा ना, कोई भी बजा दीजिएगा, उनका तो सारे गाना अच्छा है।
1: और ये गाना आप किस किस को सुनाना चाहते हैं?
0: सारे लिसनर्स को आपको।
1: ओके,
0: और सुनिए ना, ये वाला सुना दीजिएगा।
1: बताइए।
0: कभी जो भूल ना चाहूँ, न जाने क्यों मेरे दिल पर मुझे तुम याद आते हो।
1: ओके
0: जी,
1: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
8: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
8: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
8: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
8: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
10: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
8: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
8: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87 8 94 18 7 44।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
16: Now pick it up, hello. Now pick your phone up,
17: hello.
16: Pick it up, pick it up.
17: Hello.
16: Now pick your phone up.
18: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 029 94 911। जी हाँ, 80 029 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
19: हेलो
17: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
19: जी नमस्कार।
17: नमस्कार, आपका नाम?
19: पचपैरा से भोला राय बोलते हैं।
17: जी बोलिए, क्या हाल है?
19: ठीक तो है।
17: तो क्या फरमाइश है आपकी?
19: आप फरमाइश है जिंदगी के ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, इसी गाना को बजाना है।
17: ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
19: आप सुनिएगा, रेडियो रिमझिम का पूरे परिवार सुनेगा, हम सुनेगा।
17: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
19: जी जी।

0: हेलो,
1: सलाम अलैकुम मैम।
0: सलाम अलैकुम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: अब बताइए क्या हो रहा है।
0: कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं। नाम
1: बताया से।
0: अच्छा, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
1: हिंदी सॉन्ग है, बातों ने जादू किया।
0: जी,
1: बैठा तू मेरा कोई वाला।
0: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: रेडियो रंजन सुनने वाले सभी श्रोता को।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: ठीक है।

0: 5512100001।
1: एडमिशन फ्री।
2: कहाँ पर?
1: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
2: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
1: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
2: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
0: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
0: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा। आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
7: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903569015 पे।
10: Now pick your phone up.
11: Hello?
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello?
10: Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
14: हम किस्मत बोल रहे हैं
13: जी, क्या हाल है आपका?
14: ठीक बात खाना हो बोलता है
13: भारती।
14: ठीक
13: बानी
14: ना? ठीक
13: फिर बताए क्या गाना सुनने के चाहे?
14: पुरान कवाली सुना दियो, चौधरी के चाल के सुना दियो।
13: अच्छा ठीक बा, सब गाना प्ले करते नहीं, सबके साथ सुनत रहे रेडियो रंजन में कॉल करे खाते आपके धन्यवाद।
14: ठीक बा।
15: शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी।

0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ।
1: जी, आपका घर कहाँ है?
0: जी, मैं ग्राम डुमरामा हुआ, जिला नालंदा, थाना सामा।
1: क्या हाल है आपका?
0: बस बढ़िया जी, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है। फिर क्या हो रहा है अभी?
0: बस अभी आराम कर रहे हैं दोपहर में।
1: अच्छा, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
0: मुझे लोहा फिल्म का गाना सुनना था मैडम।
1: गाने का नाम बता दे।
0: पतरी कमर लंबे बाज आयरला हुस्न तेरा।
1: जी, गाना आपको प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी। और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे। सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो,
12: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
13: हाँ, मैं राम नरेश चौधरी बोल रहा हूँ बरगछिया से।
12: बोलिए,
13: एक तो गाना सुनना है जी।
12: कौन सा?
13: फिल्म का तो नाम है रास्ते प्यार की। गाने का बोल है, ये वक्त न खो जाए बस आज ये हो जाए। एक लाइन गाऊं क्या?
12: जी बिल्कुल गाइए।

0: यही गाना कभी।
1: आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं।
0: हाँ गाते थे कलकत्ता में।
1: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो आपको सारे लिसनरों को मैं नया नया पहली बार जुड़ा हूँ जी।
1: अच्छा,
0: वैसे तो मैं जानता हूँ सभी के नाम, लेकिन एक ही बार सभी को बोल रहा हूँ, सभी सुनेंगे। गाना बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत रेखा और जितेंद्र जी पर फिल्माया गया।
1: अच्छा, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी जी, धन्यवाद।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: क्या सुनना है मैडम?
1: आप अपना नाम बताइए।
0: हमारा नाम मौलादीन है।
1: कहाँ से?
0: कैथोलिया से बोल रहा हूँ, ससम से कैथोलिया।
1: अच्छा, कैसे हैं?
0: ठीक है। अच्छा, तो गाना सुनवा दी।
1: कौन सा वाला बताइए?
0: बस उड़िया अब यही पुकार।
1: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: साहिबा खातून है, सनाज खातून है, गुलाबता खातून है, हसीना खातून है, जोड़ा खातून है, जमशेद आलम है, इरफान अली, अरमान अली, ये सब सुनना चाहते हैं।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87894 18744।
7: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
8: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
7: तो देर मत कीजिए,
8: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
10: ठक ठक।
11: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
12: अच्छा मिला ही नहीं।
11: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
13: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
11: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
13: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
14: Now pick your phone up.
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: हेलो मैम,
16: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजियम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
17: जी मैम, मनन कपूरा से मैं बोल रहा हूँ।
16: जी क्या हाल है आपका?
17: बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, आप कैसी हैं?
16: मैं ठीक हूँ।
17: चलिए, दूसरी बार आपसे बात हो रहा है।
16: जी
17: तो आप गाना सुनवा दीजिए कोई।
16: कौन सा गाना सुनेंगे?
17: ये हाथे मेरे साथी का गाना, नफरत की दुनिया छोड़ के रहना मेरे यार, वो गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
16: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
17: पहले तो आपको और हमारे घर में जो जितने सुनने वाले लोग हैं और जितने जो रेडियो प्रेमी है रिमझिम का, उन लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ गाना को।
16: जी बिल्कुल, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
17: ओके थैंक यू।

0: हेलो, बहुत
1: हेलो,
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम
0: नमस्ते, आप अपना नाम बताइए।
1: जी। नेहा बोल रहा है, बहुत अच्छी। नेहा ठीक
0: नेहा जी, क्या हाल है आपका?
1: है, अपना बताइए।
0: मेरा भी
1: आपका
0: ठीक है। हाँ,
1: अच्छा हो गया?
0: आप कर ली?
1: हाँ, हमने नाश्ता कर लिया।
0: तो क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश यही है, यही आए सही है कि नहीं है, सारी चमक में आ गई जाना।
0: अच्छा, तो ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: आपको सबसे पहले सब सबके साथ
0: जी ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: करेंगे।
0: नमस्ते।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अब बेटा बहु घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
9: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।
13: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
14: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
15: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
16: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
17: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
18: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो
20: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या नाम है? क्या हाल है?
19: ठीक है, अच्छा है। गाना सुना दीजिए।
20: बताइए
19: जी, अपनी मर्जी से सुना दीजिए।
20: ये फरमाइश शो है तो आप अपनी पसंद का गाना बता दें।
19: खेसारी लाल को हिंदी में।
20: कौन सा सॉन्ग?
19: आप अब इतना पता नहीं उतना गाने के बारे में, मैंने आप अपना मन से गा दीजिए बता दीजिए।
20: अच्छा जी ठीक है, मैं अपने मन से चला दूंगी फिर। और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
19: जी मैम पहले आपको
20: जी,
19: जो जुड़े इसमें सब कोई को।
20: अच्छा ठीक है फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: आप भारती बोल रहे हैं ना?
0: जी, आपका नाम?
1: अनिश कुमार मिश्रा, दिल्ली।
0: अच्छा, क्या हाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: मेरा ठीक है। क्या हो रहा है अभी?
1: काम हो रहा था, चाय पी रहे थे, तो मैं सोचा कि आज भी अपनी हाजिरी लगा ले।
0: जी बिल्कुल, फिर बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: बबीता सागर का कैसन बारा लक्ष्मण देवरवा।
0: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: कितना लिस्नर है सारे सुन लेंगे।
0: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
5: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
9: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shal

0: premiumhospital.com. Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
1: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
3: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग जी सर, क्या नाम है आपका?
3: दिनेश कुमार।
2: कहाँ से?
3: इच्छा नारायण से।
2: जी क्या हाल है?
3: बढ़िया है, आपने बताइए।
2: मेरा भी बढ़िया है। क्या हो रहा है फिर?
3: क्या हो रहा है, घर में सोए हैं, धूप निकला है बहुत तेज।
2: जी धूप तो बहुत ज्यादा है। फिर बताएं। मेरा बढ़िया है।
3: अभी बहुत देर से मेरे कॉल लगा है।
2: फिर बताएं।
3: गाना बजा दीजिए, हिंदी सॉन्ग बजा दीजिए, अपना पसंद है कोई भी।
2: अपनी पसंद बता दें, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
3: अपना पसंद है कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। वो हिंदी हमने तो बता दी है, हिंदी बजा दीजिए, कोई भी जो अपने आप सुनते हैं वही बजा दीजिए।
2: ठीक है फिर। और ये गाना आप किसको सुनाएंगे?
3: पावलो का डेडिकेट रहेगा, दीदी उनको, सोनी मैम को, आपको रहेगा, डायरेक्टर सर को, सोनू सर को, पूरा रेडियो में।
2: और आप नहीं सुनिएगा?
3: नहीं तो मैं तो सुनेंगे ना।
2: ठीक है फिर, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंग में। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
3: ठीक।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्कार भारती जी।
0: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम निर्मलेश कुमार शर्मा, मैं जिला से बोल रहा हूँ।
0: जी, क्या हाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बस रेडियो से गाना सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, तो क्या फरमाइश है आपकी?
1: गाना सुन रहे हैं।
0: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
1: वो गाना नहीं है, चंडाल पिक्चर का गाना है, कबूतरी बोले कबूतर से।
0: जी,
1: वही गाना सुनना है।
0: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: आपको और छोटे अनिल जी है, छोटे गुड़िया जी है, निर्मला जी है, प्रवेश मनोज शर्मा है, और मेरे पपे भैया है, और सोलर बिकिन मास्टर है, और साथ में हमारा भंडारी भी सुनना है।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894 18744।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
12: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
13: हर घर सूर्य घर।
14: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
15: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
14: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
16: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
14: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
16: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
14: और 90-97-61-60-02।
17: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: आइए हवा महल में आज सुनते हैं चौखट के बाहर। निर्देशिका है शकुंतला वर्मा।
1: इधर आना।
2: आया बहन जी, कहाँ जाना है?
3: महानगर। कितने पैसे?
2: आया 2.5 रुपए बहन जी।
1: और सुधा, ठहरो भाई, मैं भी आ रही हूँ।
3: अरे जी, तुम भी?
1: हाँ,
3: इसी गाड़ी से आई हूँ।
1: हाँ,
3: मैं जब स्टेशन पहुँची तो गाड़ी खिसकने लगी थी, दौड़ कर बड़ी मुश्किल से पिछले डिब्बे में चली।
2: चलिए बहन जी, चलिए, पुलिस वाला यहाँ ज्यादा देर नहीं खड़ा होने देता।
3: चलो नीलू, बैठो।
2: चल भाई चलो।
3: सुबह तुम ट्रेन भी नहीं मिले तो मैं समझी आज तुम नहीं आई हो। मैं 10 बजे वाली गाड़ी से गई थी। आज क्या करूँ, सुबह खाना बनाते, बच्चों को तैयार करते, 9 बजे की गाड़ी पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: तो फिर सुधा, आज तुम्हें फिर देर हो गई होगी।
3: और क्या, हफ्ते में 3 दिन यही होता है, इतनी ढेर काम हो जाती है। सुबह खाना बनाने से लेकर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और सबका लंच बॉक्स पैक करने का मुझको ही तो करना पड़ता है।
1: लेकिन सुधा, तुम्हारी सास भी तो तुम्हारे साथ रहती है ना?
3: हाँ, वो भी चलते चलते कोई ना कोई काम बताती रहती है। बहू, जरा पूजा के बर्तन धोती जाना, मेरी साड़ी छत पर फैला देना।
1: अरे रिक्शे वाले, जरा धीरे चलो ना, इतनी भीड़ है।
3: नीलू, तुम कई दिन से लौटते समय इस गाड़ी से नहीं आ रही हो, क्या बात है? दफ्तर में काम ज्यादा है?
1: नहीं सुधा, दफ्तर में तो काम ज्यादा नहीं है, पर मोती झील से कानपुर स्टेशन तक रिक्शे से आने में भी तो काफी समय लग जाता है।
3: रिक्शे से क्यों? क्या तुम्हारा कुलीग आलोक आजकल तुम्हें स्कूटर से नहीं छोड़ता? स्कूटर स्टेशन के पास ही रहता है ना?
1: हाँ, लेकिन मैं अपने आप ही कोई न कोई बहाना कर रिक्शे से चली आती हूँ।
3: पर ऐसा क्यों करती हो तुम? बेकार रिक्शे के पैसे भी खर्च होते हैं और गाड़ी भी छूट जाती है। आलोक तो इतना अच्छा लड़का है।
1: हाँ सुधा, वो बहुत अच्छा लड़का है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उस पर कीचड़ उछाली जाए।
3: आखिर हुआ क्या?
1: होना क्या है सुधा, तो मुझे दफ्तर से स्टेशन तक पहुंचा देता था ना, बस दफ्तर के कुछ लोगों ने मुझे उसके स्कूटर पर आते देख लिया।
3: फिर
1: जानती हो तुम तो सुधा, क्या लोग मुझसे कितना झूठा है, और फिर वो तो शादीशुदा है, मैं तो उसे बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह समझती हूँ।
3: वो भी तो बड़ी बहन की तरह तुम्हारी इज्जत करता है।
1: हाँ, पर दफ्तर में ऐसी ऐसी अफवाहें मेरे और उसके बारे में उड़ाई जा रही हैं कि मुझे तो कहने में भी शर्म आती है।
3: स्त्री की तो हर तरह से मुसीबत है,
1: खास तौर पर सुधा मेरी जैसी अविवाहित और अकेली रहने वालियों की तो बहुत ही आफत है।
3: अरे नीलू, शादी के बाद तो और भी हजारों झंझट है, तुम कम से कम सुबह चैन से तैयार होकर दफ्तर से जा सकती हो, इस समय पहुँच कर एक तरह चाय आराम से तो पी सकती हो।
1: वो तो सब ठीक है सुधा, पर ये जो कदम कदम पर झूठी अफवाहें और लांछन सहने पड़ते हैं, ये सब बर्दाश्त नहीं होते हैं।
3: अरे रिक्शे वाले, जरा उधर उस सब्जी की दुकान के पास रोक देना, थोड़ी सब्जी ले।

0: गुड़िया, ओ गुड़िया, अरे तंजू, जाने कहाँ चले गए दोनों। स्कूल से आते ही खेलने चल देते हैं, घर में तो किसी का जी ही नहीं लगता। जब देखो हर समय घर से बाहर, घर से बाहर। कौन है? अभी आई, चल कर देखूं, शायद विपिन आ गया है। अरे हाँ, विपिन ही तो है।
1: माँ,
0: हाँ,
1: घर में कोई नहीं दिखाई दे रहा, ये बच्चे कहाँ चले गए?
0: होंगे कहाँ, खेलने गए होंगे, स्कूल से आते ही तो चल देते हैं। घर में किसी का पैर टिकता ही कहाँ है, और वो बहुरानी भी तो नहीं आई है अभी तक।
1: अच्छा मैं, वो कोई टीवी ठीक करने वाला आया था तुम्हें?
0: हाँ हाँ आया था।
1: अच्छा अच्छा,
0: बड़ी देर तक ठीक ठाक करता रहा, पूरे समय बैठी रही। आज तो दोपहर में एक घड़ी आराम करने को नहीं मिला।
1: अच्छा माँ, अब तुम आराम कर लो।
0: अरे बेटा, मेरे भाग में आराम कहाँ, सब चल देते हैं। दिन भर घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, यहाँ चौकीदारी करो, कभी ये उठाओ, कभी वो धरो, कभी कोई आया, कभी कोई गया, परेशान हो गई हूँ मैं तो, जैसे मैं ही चौकीदार हूँ घर की।
1: अरे आ गई से था तुम?
2: आज ट्रेन कुछ लेट हो गई थी, और आज तो मैं सब्जी खरीदने लगी, इसी में कुछ देर हो गई।
0: आ गई बहुरानी
2: जी? माँ जी।
0: अरे विपिन दफ्तर से आकर ऐसे ही बैठा है, मैं चाय तक नहीं पीता। जल्दी से चाय बना लाओ बहू।
2: अभी बनाती हूँ चाय। माँ जी बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं।
0: होंगे कहाँ, आते ही तो खेलने चले गए। इस घर में कोई टिकता भी है?
2: आते ही हुक्म मिल गया, चाय बनाओ। इनके बेटे ऑफिस से थक कर आए हैं, मैं तो जैसे थकती ही नहीं।
0: बहुरानी जी। माँ जी, अदरक डाल देना चाय में, और मटरी भी निकालती लाना, वहीं रखी है ऊपर डिब्बे में। ला रही हूँ।
2: गनीमत है मटरी रखी है, वरना भी कुछ बनाने का भी आदेश दे दिया जाता। माँ जी।
0: हाँ।
2: आपकी चाय गिलास में आपके पलंग के पास रख दी।
0: अच्छा,
2: आप यहाँ मेज पर नहीं पीती ना?
0: बहुरानी मेरी चाय में नमक भी डाल दिया है ना?
2: अरे वो तो भूल ही गई,
0: अभी लाई। मालूम है कि आजकल मुझे खांसी हो रही है, चाय में नमक डाल कर पीती हूँ, पर मेरा काम किसे याद रहता है।
2: मैं अभी नमक डाल देती हूँ माँ जी।
0: बस बस रहने दो, मैं खुद डाल लूँगी। अरे अब खड़ी खड़ी मुझे क्या घूर रही हो, जाकर विपिन को चाय दो।
1: सुधा, आज कुछ ज्यादा थकी हुई लग रही हूँ।
2: आप देखते तो हैं, सुबह से लेकर रात तक मशीन की तरह से जुटी रहती हूँ। यहाँ से कानपुर नौकरी करने जाना कोई आसान है?
1: हाँ, काम तो बहुत पड़ जाता है तुम्हारे ऊपर, मेरे ख्याल से तुम नौकरी छोड़ दो।
2: अरे आप क्या कह रही हैं? बच्चे बड़े हो रहे हैं, दिन ब दिन खर्चे बढ़ रहे हैं, उस पर मैं नौकरी छोड़ दूँ? 1000 रुपए महीने की आमदनी बंद हो जाए।
1: अच्छा एक प्यारा चावल बनाना सुधा।
2: नौकरी छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती है।
1: फिर क्या किया जाए, तुम्हारी इतनी दौड़ थकान और मानसिक तनाव को देखकर ही।
2: और कुछ नहीं किया जा सकता, क्या ये नहीं हो सकता कि घर का काम सभी थोड़ा थोड़ा कर ले, हर काम के लिए मुझ पर ही निर्भर न किया जाए।
1: सुधा, इस घर का हमेशा यही फायदा रहा है कि बहुएं ही पूरा घर का काम संभालती रही।
2: पर उस समय बहुएं सिर्फ घर का ही काम करती थी, बाहर नौकरी नहीं। क्या बाहर से सिर्फ आदमी ही थक कर आता है, औरत नहीं?
1: शायद तुम ठीक कह रही हो सुधा, अगर औरत की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं तो आदमी की जिम्मेदारियाँ भी बढ़नी चाहिए।
2: बच्चे अभी तक नहीं है,
1: आ जाएंगे, कहीं खेल रहे होंगे।
2: अभी खाना भी बनाना है। अच्छा उठो, पहले सब्जी काट लूं।
1: आज खाना तुम अकेले नहीं बनाओगी, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा।
2: खाना बनाएंगे?
1: अरे देखिए तो हम कितने स्मार्ट हैं रसोई के काम में, मेरे हाथ का बना खाना खाएंगी तो पता चलेगा कि खाना बनता कैसे है। और हाँ, मैं बच्चों से भी कहूंगा कि अपने छोटे मोटे सारे काम वो खुद किया करें। अरे तुम आलू काट रही हो, हटो, लाओ इसको मुझे दो, और तुम जाके उधर आटा गूंदो, जब तक आलू मैं काट लेता हूँ।
0: बहुरानी, ओ बहुरानी।
3: जी माँ जी।
0: अरे विपिन, ये क्या तुम सब्जी काट रहे हो? अरे ऐसा तो आज तक हमारे घर में कभी नहीं हुआ है।
1: आज तक तो और भी बहुत कुछ नहीं हुआ है इस घर में।
0: क्या नहीं हुआ, जरा मैं भी तो सुनूं।
1: कभी तुम्हारे घर की कोई बहू 1000 रुपए महीना कमा कर लाई है? कभी रोज कानपुर आई गई है नौकरी करने?
0: मुझे क्या, अरे जैसा चाहो वैसा करो, मेरी तो कट गई, अब तुम दोनों को ही करना है जो कुछ करना है। पर हाँ इतना बता देती हूँ, मुझसे चौकीदारी होने से रही।
4: यहाँ से
2: अरे सुधा, आज बड़ी जल्दी स्टेशन पहुंच गई। अभी तो गाड़ी चलने में 10 मिनट बाकी हैं। हाँ, आज सुबह बच्चे खुद ही तैयार हो गए। इन्होंने काम में मेरी मदद की, अपना, मेरा और बच्चों का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया। बस मैं झटपट तैयार होकर आ गई। अच्छा, ये परिवर्तन कैसे आ गया सुधा? नीलू, दरअसल वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पर माँ जी सदियों से चली आ रही परंपरा तोड़ना नहीं चाहती। घर का हर काम बहू ही करे, यही तो बात है सुधा। पुराने लोग आज भी वही अपेक्षा करते हैं जो वर्षों पहले स्त्रियों से की जाती थी। दरअसल बात यह है नीलू कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन समाज ने भी इस चीज को पूरी तरह स्वीकार ही कहा किया है, इसलिए नारी से हर तरह की अपेक्षाएं की जाती हैं। लेकिन सुधा, आज की नारी सदियों से बुलाने की बेड़ियों में जकड़ी हुई घूंघट निकाल कर पति की माँ से जीवित संपत्ति तो नहीं रह गई है।
3: ये तो ठीक है कि वो हर क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, पर समाज में अभी वैसा वातावरण बना ही कहाँ है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं।
2: कैसे हैं सुधा?
3: जो मानसिक रूप से स्त्री की बदलती हुई स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, उससे समझौता नहीं कर सके हैं।
2: चलो बैठा जाए सुधा, अब गाड़ी चलने ही वाली है।
3: देखो, आज शाम को जल्दी स्टेशन पहुंच जाना।
2: सुधा, कैसे इतनी दूर रिक्शे से?
3: रिक्शे से नहीं, आलोक तुम्हें छोड़ेगा। इन कहने वालों की परवाह करोगी ना तो जिंदगी दूभर हो जाएगी। जब अपना मन साफ तो कहने वालों की परवाह करो।
2: क्यों, तुम ठीक कह रही हो सुधा। जब मेरे मन में खोट नहीं तो कहने वालों की भी परवाह नहीं करूंगी।
3: ये हुई ना बात। हमें आगे बढ़ना है तो इन सब कठिनाइयों का हिम्मत से मुकाबला करना ही पड़ेगा।
2: जल्दी बैठो सुधा, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी।
3: चलो
2: चलो, चलो, चलो।

0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
8: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
9: कहाँ पर?
8: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
9: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
8: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
9: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता चवही खास NH 27 गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569650।
10: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
11: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
11: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
11: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कइले से का फायदा?
12: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: जरूर सुरेश होगा, आने दो उसे, ऐसी खबर लूंगी कि याद रखेगा।
14: हाय दीदी।
15: ऐसा लगता है दीदी, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई?
13: नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा सुरेश होगा।
15: अरे सुरेश तो इसी घर का बच्चा है, कभी भी आ जाएगा, उसकी राह देखने का क्या मतलब?
13: तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्यों परेशान हूँ।
15: तुम जरा खुलकर बात करो तो समझ में आए ना।
13: वो गुप्ता जी है ना?
15: गुप्ता जी? कौन गुप्ता जी?
13: अरे वही तेरे जीजा जी के मित्र, उनकी एक लड़की है।
15: लो, गुप्ता जी के यहाँ एक लड़की हो जाने से तुम क्यों परेशान हो रही है?
13: अरे पूरी बात तो सुन।
15: अच्छा बता।
13: तेरे जीजा जी सुरेश की शादी गुप्ता जी की लड़की से करना चाहते हैं।
15: ये तो और भी अच्छी बात है।
13: ये क्या खाक अच्छी बात है। आज जब गुप्ता जी अपनी लड़की के साथ यहाँ आए तो वो कहीं गायब हो गया। बेचारे गुप्ता जी अपनी लड़की के साथ यहाँ 2 घंटे बैठे उसका इंतजार करते रहे।
15: अब समझ में आ रहा है।
13: क्या समझ में आ रहा है?
15: यही कि एक और प्रेम और दूसरी और जालिम समाज। ऐसी हालत में हीरो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा?
13: बस तू तो अपनी हांकने लगा। और तू जानता है कि तेरे जीजा जी कितने जिद्दी हैं? उन्होंने ये तय कर रखा है कि सुरेश की शादी अगर किसी से होगी तो वो गुप्ता जी की लड़की से होगी।
15: ओ
13: देखू तो सही। कौन आया है? अरे कहाँ चला गया था? कम से कम बताकर तो जाता।
14: माँ मुझे नहीं करनी है ये शादी।
13: नहीं करनी है शादी? ये बात तो अपने पिताजी से तो कह सकेगा ना।
14: यही तो मुसीबत है माँ, मेरी तो जुबान ही नहीं खुलती उनके आगे। ओ मामा जी आप कब आए?
15: बस ये समझ लो कि अभी आया। वैसे बहुत अच्छे समय पर आया हूँ भांजे। अच्छा ये बता, गुप्ता जी की लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो किससे करना चाहता है?
14: वो मैं मामा जी वो
15: ऐसी बातें कम से कम माँ से तो छुपानी ही नहीं चाहिए।
13: हाँ हाँ बता दे बेटा, है कोई लड़की तेरी नजर में?
14: मैं माँ वो शादी करूंगा तो केवल सविता से ही करूंगा।
13: सविता?
15: कौन सविता?
14: वो मेरे दफ्तर में टाइपिस्ट है माँ।
15: क्या ट्विस्ट आया कहानी में?
13: मैं समझी नहीं।
15: और समझोगे भी नहीं दीदी। ये कहानी मेरी फिल्म से कितनी मिलती जुलती।
14: मामा जी ये कहानी नहीं हकीकत है।
15: मेरे लिए एक ही बात है बेटे।
14: माँ अगर मेरी शादी सविता से नहीं होगी तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगा।
15: तुम्हें अब कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भांजे, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी नैया पार लगा कर ही रहूंगा।
14: माँ पिताजी आ गए।
13: तू अंदर जा, तुझे देखते ही उनका पारा चढ़ जाएगा।
14: अच्छा माँ तुम पिछले महीने ही तो तुम यहाँ से गए थे।
15: बस
14: फिर तो ना पड़े।
15: बस दो चार दिन के लिए आया हूँ, काम होते ही चला जाऊँ।
14: अरे तुम जब भी कभी आते हो
16: दो चार दिनों के लिए तो आते हो, और जब तक दो चार महीने नहीं बीत जाते तुम खिसकने का नाम नहीं लेते।
13: आप आते ही पड़ गए हैं बेचारे के पीछे। कोई घर आए मेहमान से ऐसे पेश आते हैं?
16: मेहमान? अरे कौन मेहमान? ये मेहमान है
15: जी।
16: अरे किसने बुलाया था इसको यहाँ? जब देखो चला आता है मुंह उठाए।
13: बस भी कीजिए बस, आपको तो जैसे मेरे घर वालों से बैर हो गया है।
16: देखो रुक।
17: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिनों की भारत यात्रा पर गया जी पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के सुरक्षित परिचालन को लेकर सख्त निर्देश दिए। और राज्य में आंधी बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग आज भारत की 5 दिनों के दौरे पर बिहार के गया जी पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है।
18: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
17: राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। सोमवार को म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। ये दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यात्रा के क्रम में राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से वार्ताओं के लिए मुंबई भी जाएंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
19: He'll be meeting our Prime Minister and where both leaders...
20: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
19: This is official visit and we look forward to welcoming the President of Myanmar.
17: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में पटना समाहरणालय भवन में आज जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति और जिला नागरिक परिषद की बैठक आयोजित की गई। श्री चौधरी ने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
21: आज पटना जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक जिसमें माननीय सांसद, माननीय विधायकों और माननीय सदस्यों द्वारा अनेक सुझाव दिए गए जो लागू करने लायक थे हमने निर्देश दिया है और जिला पदाधिकारी ने तत्काल उसको लागू करने का आदेश भी दे दिया है और उनके बहुमूल्य सुझाव भी आए हैं।
17: पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नाव के सुरक्षित परिचालन को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कहा गया कि बिना निबंधन वाली नाव का परिचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
22: परिचालन को लेकर के नेक्स्ट टू डेज में सभी अंचल अधिकारी और थाना अध्यक्ष छोटे घाटों में और बड़े घाटों में सभी एसडीओ और डीएसपी सभी नाविकों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया। निबंधन का अभियान चला करके निबंधन कराया जाएगा। कई जगह है क्योंकि लंबे क्षेत्र है और जगहें ज्यादा है, कई जगहों से परिचालन होती है। सब जगहों को आइडेंटिफाई करके पहले नाविकों को जागरूक करने और नियमों को समझाने के लिए निर्देश दिया गया। पर्यटन घाट के नाविकों के साथ ऑलरेडी बैठक हो चुकी है। ये वहां से बड़ी क्या में नटा दियारा के लोग आते जाते।
17: जिलाधिकारी ने बताया कि सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले गंगा नदी में नावों का परिचालन नहीं किया जाएगा। उन्होंने पटना के सभी घाटों पर पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए सीबीएसई की टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800118004 पर संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अंतिम आदेश पारित किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। बिहार सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि विशेष निगरानी इकाई से प्राप्त प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेजों में अनुचित लाभ लेने के आरोप में निलंबन की गई है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी योगेश कुमार सागर को और इसी आरोप के आधार पर जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा को पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर समस्त पत्रकार बंधुओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निष्पक्ष, निर्भीक और जनहितकारी पत्रकारिता समाज को जागरूक तथा सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के नेतृत्व में संगठन विस्तार की सराहना की है। नवनियुक्त सभी प्रदेश पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पटना में आज बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को लेकर पदयात्रा निकाली गई। एक रिपोर्ट।
2: आज सुबह 6 बजे पटना के गांधी मैदान से आयकर गोलंबर तक पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पदयात्रा निकाली गई। इस यात्रा में लगभग 500 पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा से पहले गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई गई।
3: मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पर्यावरण को बचाने के लिए
4: अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा।
2: सभी प्रतिभागियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए और स्वच्छ तथा हरित वातावरण बनाए रखने का आह्वान किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
0: मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पद्मा गांव के गणेश चौक के पास NH 227 पर 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर किया गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पश्चिम चंपारण जिले के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग के जिले के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
5: दिनांक 31 मई राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।

0: वहीं सारण, खगड़िया, रोहतास और भागलपुर में एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन हादसों पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहे लाभों के लिए लाभुकों ने केंद्र सरकार का आभार जताया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सारण जिले के कई लाभुकों ने बताया कि गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाएं उनके परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
1: मेरा मुन्ना कुमार नाम है, छपरा जिला घर है। मेरा शौचालय मिला है, जितना गरीब का अच्छा हुआ काम मिला है। सरकार के नियम और आगे में बढ़े, काम अच्छा हो।
2: मेरा नाम नवीना पंडित है। सरकार के राशन कार्ड गैस मिला है सरकार।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिनों की भारत यात्रा पर गया जी पहुंचे। महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी में नावों के सुरक्षित परिचालन को लेकर सख्त निर्देश दिए। और राज्य में आंधी, बारिश और वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: मुझे तुम्हारे घर वालों से कोई डर नहीं, परंतु अपने इस लाडले भाई से कहो कि अपना पागलपन अपने तक ही रखे।
1: जीजा जी, जब तक इस कहानी को अंत तक न पहुंचा दूं तब तक मैं इस घर से जाने वाला नहीं।
0: कहानी? कैसी कहानी? अरे रुक्मणी, ये क्या बकवास कर रहा है? जरूर ये कोई शरारत करने वाला है। वो सुरेश कहाँ है?
2: वो अभी तक नहीं आया।
0: अरे झूठ क्यों बोलती हो, वो अंदर है, मैं जानता हूँ। उसका स्कूटर बाहर खड़ा है।
3: जी जी जी पिताजी।
0: अरे कहाँ चला गया था तू? वो तुझसे कहा गया था ना कि तुझे गुप्ता जी की लड़की देखनी है।
1: जीजा जी, इसने लड़की देख भी रखी है और पसंद भी कर रही है।
0: ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे सुरेश, तू कुछ कहता क्यों नहीं?
2: सुना सुना, आप इतना गुस्सा करेंगे तो बेचारा का मुंह कैसे खुलेगा?
0: वीरेंद्र बकवास तो नहीं कर रहा है?
2: नहीं नहीं नहीं, ये सच कह रहा है। सुरेश को एक लड़की पसंद है, उसका नाम सविता है।
0: आए?
2: उसके दफ्तर में टाइपिस्ट है।
0: अरे तुमको इतना सब पता था और तुमने मुझे नहीं बताया?
2: सुनो जी, लड़का नौजवान है, अगर जबरदस्ती की गई तो वो कुछ कर बैठेगा।
0: मैं ऐसी बातों से डरने वाला नहीं हूँ। सुरेश को समझा दो उसे कि वो शादी वहीं करेगा जहाँ मैं चाहूँगा।
1: जीजा जी, अब आप इस बढ़ते हुए तूफान को नहीं रोक सकते। हर युग में इसी प्रकार समाज में प्रेम का गला घोटा जाता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती
0: है। ये बात है तो सुन लो, अगर सुरेश अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो उसे लड़की वालों से दहेज में 1,00,000 रुपया नकद लाने होंगे।
1: 1,00,000 रुपए? ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है।
0: ये सब मैं नहीं जानता।
1: ठीक है, अगर 1,00,000 रुपए आपको मिल जाएंगे तो क्या आप सविता को स्वीकार कर लेंगे?
0: अरे पहले 1,00,000 रुपए तो लाओ, फिर बात करेंगे। वो रुक्मणी, देखो मैं जरा अंदर आराम करने जा रहा हूँ, कोई आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ।
1: 1,00,000 रुपए?
2: अरे वीरेंद्र, 1,00,000 रुपए कहाँ से लाओगे?
1: इसके बारे में बाद में सोचेंगे दीदी, पहले मुझे सुरेश से 2-1 प्रश्न करने हैं। सुरेश
3: जी,

0: जी मामा जी।
1: ये बताओ सविता देखने में कैसी?
0: मामा जी आप खुद देख लीजिएगा ना, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ।
1: ठीक, कहाँ तक पढ़ी है?
0: एमए है।
1: गुड, रसोई का काम जानती है?
0: मामा जी बहुत ही अच्छे पकवान बनाती है, उसके हाथ के बने गाजर के हलवे का तो जवाब ही नहीं है मामा जी। पर मामा जी आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
2: अरे भांजे, यही तीन प्रश्न तो पूछे थे जीजा जी ने अपनी शादी से पहले। अच्छा ये बता, तो सविता को यहाँ ला सकता है?
0: क्यों नहीं मामा जी।
1: तो फिर जाओ तुरंत उसे लेकर आओ।
0: ठीक है।
3: भैया बता कि 1,00,000 रुपए का प्रबंध कौन करेगा?
1: तुम करोगी दीदी।
3: मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं?
1: झूठ मत बोलो दीदी, क्या तुमने माँ को यह नहीं लिखा था कि जीजा जी की जायदाद के पैसे पूरे 2,00,000 आ गए हैं?
3: ना बाबा ना, उन पैसों को तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती। तेरे जीजा जी को अगर पता लग गया ना तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, अपने साथ तो मुझे भी पागल करके ही रहेगा।
1: अरे तुम कैसी माँ हो, अपने बेटे की खुशियों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? फिर सोचो दीदी, 1,00,000 रुपए कौन से घर से बाहर जा रहे हैं?
3: ये तो उन्हें जब पता चल जाएगा ना कि उनके साथ धोखा हुआ है
1: तो इससे तो क्या होगा?
3: कुछ नहीं होगा, तू तो मुझे इस घर से निकलवा के रहेगा।
1: दीदी अगर तुम अपने घर में बहू देखना चाहती हो तो तुम्हें ये सब सहन करना ही पड़ेगा। और फिर जीजा जी का गुस्सा है भी कितनी देर का, गर्म हुए बरसे और ठंडे पड़ गए।
3: ये तो ठीक है, पर ये पता चल जाने के बाद कि उनके साथ धोखा किया गया है वो फिर से अड़ गए तो?
1: यही पर तो मात खा रही हो तुम। अरे तुम अभी तक जीजा जी को समझ ही नहीं पाई हो कि वो कैसे आदमी है। अरे एक बार शादी के लिए हाँ करके ना नहीं करेंगे, चाहे उनके साथ कितना भी छल क्यों ना किया जाए। दीदी तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ, वो नाटक किया करता है, उसके पास मेकअप का सामान है और मैं मेकअप लगा कर तुरंत वापस लौटता हूँ, और तुम पैसे तैयार रखना।
3: ठीक है।
0: सविता ये मेरी माँ है, चरण छुओ ना।
4: नमस्ते माँ जी।
3: अरे अरे ये रहने दे बेटी, भगवान तुझे सदा खुश रखे।
0: मामा जी कहाँ है?
4: मेकअप करने गया है, आते ही होगा।
3: सुरेश तू पहले क्यों नहीं लाया सविता को इस घर में?
0: हिम्मत नहीं हो रही थी माँ, और डर भी लग रहा था कि सविता आपको पसंद आएगी भी या नहीं।
3: अरे इतनी सुंदर लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा।
4: लगता है वीरेंद्र आ गया है।
5: कैसा लग रहा हूँ दीदी?
3: ये क्या मेकअप कर रखा है, पूरे 60 साल का लग रहा है।
1: अरे देखा भांजे, तुम्हारे लिए क्या क्या स्वांग भरना पड़ रहा है।
0: अच्छा तो ये सविता है?
4: नमस्ते मामा जी।
5: नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।
0: ये मेकअप मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मामा जी।
1: भांजे ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं सविता का चचा जगमोहन बनकर जीजा जी से मिलूंगा और तुम्हारी शादी पक्की करवाऊंगा।
0: पैसे मामा जी? वो
1: भांजे तुम आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से क्या लाभ। हाँ तो दीदी पैसे कहाँ हैं?
4: ये रहा ब्रीफकेस, पैसे इसमें रखे हैं।
1: और इस डिब्बे में क्या है?
4: गाजर का हलवा, आज सुबह ही बनाया था, सुरेश ने कहा कि थोड़ा साथ ले चलते हैं।
1: ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ तो दीदी जीजा जी से कहना सविता के अंकल जगमोहन उनसे मिलने आए हैं।
4: अच्छा मैं अभी बुलाती
0: हूँ। मामा जी यू आर ग्रेट।
1: भांजे नमस्ते शर्मा जी।
0: नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए बैठिए।
1: शर्मा जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे शर्मा जी मैं तो चाहता था कि सविता की शादी किसी अच्छे घराने में
0: जी,
1: हो
0: लेकिन क्या हमारा घराना?
1: नहीं, ये बात नहीं है शर्मा जी, आपके घराने से अच्छा घराना मुझे और कहाँ मिलेगा। मैं तो ये कहने जा रहा था,
5: मैं तो भूल गया।
1: हाँ ये रहे आपके 1,00,000 रुपए।
0: आप सचमुच 1,00,000 ले गए हैं?
1: शर्मा जी आप बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, आप देख लीजिए पूरे 1,00,000 है।
0: हाँ जी
1: आप ही के पैसे।
0: क्यों शर्मिंदा करते हैं आप?
1: जी नहीं शर्मा जी, पैसों के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं करता और करना चाहिए भी नहीं।
5: तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
0: जी हाँ जी हाँ बिल्कुल पक्का समझिए साहब।
1: ये लीजिए तो मुंह मीठा कीजिए। सविता ने बनाया
0: गाजर का
6: हलवा बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वादिष्ट है।
3: आपको कैसे पता चला कि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है?
7: अरे जीजा जी, आपकी ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपी हुई है?
3: जीजा जी,
7: मेरा मतलब है शर्मा जी। शर्मा जी, अब आपको क्या बताऊं कि मेरे जीजा जी की शक्ल आपसे कितनी मिलती जुलती है, पर एक बात की कमी है।
3: जी, वो क्या?
7: उनकी मूछ नहीं। अरे मूछ तो मर्दानगी की निशानी होती है। अब आप ही बताइए शर्मा जी, मूछों के बिना आदमी अकलमंद नजर आता है।
3: भाई मुझे इसका क्या पता, मेरी तो कोई मूछ नहीं है।
7: इसीलिए तो कहता हूँ जीजा जी के आप
3: फिर वही जीजा जी जगमोहन जी, आपकी मूछ को क्या हो रहा है?
7: हुआ कुछ नहीं है, वो खांसता हूँ ना तो हिलने लगती है।
3: ये हिल नहीं रही है।
7: नहीं, ये हिल ही रही है।
3: नहीं नहीं नहीं जगमोहन जी, ये हिल नहीं रही है, बल्कि आपके चेहरे पर से छूट रही है, छूट रही है।
7: जीजा जी, ये ऐसे ही हिलती है।
3: ये आप ही कमाल करते हैं। ये देखिए, ये तो नकली है। जरूर तुम कोई बैरू क्या हो? बताओ बताओ कौन हो तुम, वरना भी पुलिस को टेलीफोन करता।
7: अच्छा, पहले आप मेरी गर्दन तो छोड़िए।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये दाढ़ी भी तुम्हारी नकली ही लगी।
7: जीजा जी,
3: ये सब क्या क्या कर रहे हैं?
7: बस कुछ मत पूछिए, दो प्रेमियों को एक दूसरे से मिलाने के लिए ये सब नाटक करना पड़ा।
3: और जी, ये एक लाख
2: आप ही के हैं, दीदी ने दिए थे।
3: तो तुम भी इस नाटक में शामिल हो?
4: और क्या करती, आप तो अड़े हुए थे, इस समस्या को किसी न किसी प्रकार तो हल करना ही था।
3: अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें सविता पसंद है?
4: हाँ, और नहीं तो?
3: तो तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपा रखा था?
6: अरे रुक्मणी, कभी मैंने तुम्हारी पसंद को ना पसंद किया है?
8: जीजा जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
3: हाँ साले जी, पक्का ही समझिए।
6: अरे भाई, बहू के हाथ का बना गाजर का हलवा जो खाना है।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्यघर.gov.in।
11: हर घर सूर्य घर।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
14: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
15: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
14: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
14: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
15: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
14: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
15: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 8470309 या 9765665750।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 6205062112 पे।
12: यार, कुछ ऐसा खाने का मन है जो दिल भी खुश कर दे और स्वाद भी याद रह जाए,
13: तो चलो ना मोती महल रेस्टोरेंट।
12: अब स्वाद का असली ठिकाना मोती महल रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा लाजवाब नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, लजीज तंदूरी स्पेशल, चिकन, मटन, दमदार बिरयानी, साथ ही साउथ इंडियन डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पिज्जा, बर्गर, चाट, गोलगप्पे और कई शानदार वेज आइटम।
13: फैमिली डिनर, बर्थडे पार्टी, दोस्तों की गैदरिंग या वीकेंड आउटिंग, हर मौके के लिए शानदार माहौल।
12: तो देर किस बात की, तो आज ही आइए मोती महल रेस्टोरेंट, सरस्वती टॉकीज मल्टीप्लेक्स कैंपस, यादवपुर रोड, गोपालगंज,
13: जहां हर निवाला कहे वाह।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा, मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाल मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
0: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9160264498 पे।
6: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बाल मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
8: कहाँ पर?
7: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, छवही खास, गोपालगंज,
8: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
7: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
8: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास, NH 27, गोपालगंज। कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835556965।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: चल।
1: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
2: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
1: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
2: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
5: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: प्रसाद क्लिनिक,
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
10: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन, तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, रिक्तियों की संख्या है 323, तकनीशियन ग्रेड 3 रिक्तियों की संख्या है 6242। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइट। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA पुलिस अधीक्षक के 10 पदों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तैनाती भारत में कहीं भी की जा सकती है। पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के लिए देखिए NIA की वेबसाइट www.nia.gov.in। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय टाटा मेमोरियल केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। चिकित्सा अधिकारी न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद, चिकित्सा अधिकारी रेडियो डायग्नोसिस एक पद, चिकित्सा फिजिसिस्ट एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए, जबकि एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक अधिकारी SB ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक C न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B फिजियोथेरेपी एक पद अनारक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन सी नेटवर्किंग एक पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन सी ऑपरेशन थिएटर एक पद अनारक्षित है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जून 2026। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान वर्धा इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रबंधन एवं व्यवस्थापन एक पद। भर्ती की विधि रहेगी सीधी भर्ती। शैक्षिक योग्यता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अथवा एमबीए में मास्टर डिग्री या प्रबंधन के विषयों में मास्टर अथवा समकक्ष योग्यता। अनुभव रहेगा मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवारों के लिए। संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान की वेबसाइट www.mgiri.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
0: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
13: क्यों, क्या हुआ है?
12: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
13: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
12: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
13: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
15: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
16: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
15: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
16: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
15: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
17: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
18: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
17: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
18: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
17: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
18: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
19: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
17: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने संतोष फर्नीचर के नीचे कॉलेज रोड गोपालगंज।

0: मुख्य समाचार। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि सीएलपी नेता का चयन का कार्य एआईसीसी को सौंप देना चाहिए। इसके बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक सीएलपी मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डीके शिवकुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवीके द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय

0: बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
11: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
10: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
11: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
10: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
10: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
11: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
11: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: ठक ठक।
15: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
16: अच्छा मिला ही नहीं।
15: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
17: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
15: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
17: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
18: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
19: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
18: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
19: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
15: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपने दोस्त की शादी में?
20: क्यों, क्या हुआ है?
15: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
20: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
15: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
20: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
21: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, कटिया नगर पंचायत के अस्थाई समिति का चुनाव हुआ संपन्न। 50,000 के इनामी को पुलिस ने मारी दोनों पैरों में गोली। लघु जल संसाधन मंत्री ने सुनी जनता की शिकायत। 100 डाक कर्मियों को किया गया सम्मानित। और 4 जून को गुजरात की कंपनी लगा रही है रोजगार मेला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अंकित मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर निकाय पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में नगर पंचायत कटिया के सशक्त अस्थाई समिति के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर बैठक की गई। बैठक में उपस्थित निर्वाचित वार्ड पार्षदों को निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई तथा मतदान एवं निर्वाचन से संबंधित सभी पहलुओं से अवगत कराया गया। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्य पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए। निर्धारित समयावधि में सदस्य संख्या 1 के लिए वार्ड संख्या 5 की कंचन कुमारी गुप्ता, सदस्य संख्या 2 के लिए वार्ड संख्या 10 की किरण देवी तथा सदस्य संख्या 3 के लिए वार्ड संख्या 4 की रेणु देवी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सभी नामांकन पत्रों की जांच के दौरान सभी नामांकन वैध पाए गए। प्रत्येक पद के लिए केवल एक एक उम्मीदवार द्वारा ही नामांकन दाखिल किया गया था। इस कारण तीनों अभ्यर्थियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन की इस संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इसके बाद निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तथा सभी को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर आज नगर थाना के एक मामले में फरार चल रहे और जिले के टॉप 10 की सूची में शामिल 50,000 के कुख्यात इनामी अपराधी आकाश कुमार को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इसके दोनों पैरों में गोली मारी है। इस आरोपी के पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस पर कई मामले दर्ज हैं जिसमें यह फरार चल रहा था। तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यह आरोपी भिवाड़ी राजस्थान में रह रहा है और इसे गिरफ्तार कर वहां से लाया गया। पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार करने के बाद जब आरोपी को गोपालगंज लाया और यहां पुलिस आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि वह ज्यादातर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश के इलाकों में छुपकर रहता है और इसके गैंग के द्वारा एवं स्वयं अपराध कर्मी के साथ मिलकर गोपालगंज, थावे, मीरगंज आदि क्षेत्रों में रंगदारी की मांग की जाती है और नहीं देने पर गैंग के अपराधियों के निर्देशानुसार वह बाहर से आता है और गोली मारकर पुनः बाहर जाकर छुप जाता है और ये अपना आग्नेयास्त्र कहीं इसी इलाके में छुपा देता है। पूछताछ के बाद अभियुक्त के निशानदेही पर नगर थाना के सुंदर पट्टी ब्रह्म स्थान के पास आरोपी ने अपना आग्नेयास्त्र छुपा कर रखने की बात कही। आरोपी के निशानदेही पर पुलिस उसके आग्नेयास्त्र को बरामद करने के लिए उसे ले गई। वहां जाने के बाद आरोपी ने दूसरी जगह पर आग्नेयास्त्र होने की बात कही और पुलिस को गुमराह कर दिया। इसके बाद आरोपी के बताए गए जगह पर पुलिस ने जब उसके आग्नेयास्त्र को ढूंढना शुरू किया तभी बगल में ही पूर्व से पेड़ के जड़ में छुपा कर रखे आग्नेयास्त्र को निकाल कर आरोपी ने पुलिस बल पर फायरिंग कर दिया जिसमें पुलिस कर्मी बाल बाल बचे एवं गोली सरकारी पुलिस की गाड़ी में लग गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में भी फायरिंग की गई जिसमें अपराध कर्मी के दोनों पैर जख्मी हो गए। घटना स्थल को सुरक्षित किया गया और अपराध कर्मी को तुरंत सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद इसे रेफर कर दिया है। इस आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। यह 50,000 का इनामी अपराधी आकाश कुमार थावे थाना क्षेत्र के बढ़ई हत्ता गांव का रहने वाला है और मनोज सिंह का पुत्र बताया जा रहा है। इस पर थावे, कुचायकोट, गोपालगंज जैसे कई थानों में पहले से लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज हैं और इन गंभीर धाराओं में दर्ज मामलों में पुलिस इसे ढूंढ रही थी। आरोपी के फरारी के बाद इस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था जिसके बाद अब आरोपी को पुलिस ने दबोचा है। फिलहाल इसको गोपालगंज से रेफर कर दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की हाई लेवल जांच पड़ताल कर रही है। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री हैं, आज उन्होंने हम पार्टी के गरीब चौपाल आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। गोपालगंज शहर में इस दौरान जिले के कोने कोने से आए गरीब लोगों की समस्याओं को गरीब चौपाल में मंत्री महोदय के द्वारा सुना गया और उसके निष्पादन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। पूरे भारत में डाक विभाग का सिवान प्रमंडल काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इसको लेकर भारतीय डाक ने उत्कर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया। गोपालगंज में हुए उत्कर्ष कार्यक्रम के आयोजन में डाक विभाग में बेहतर सेवा देने वाले 100 डाक कर्मियों को आज सम्मानित किया गया। इस दौरान मुजफ्फरपुर से आए डाक महाध्यक्ष उत्तरी पवन कुमार सिंह ने सभी डाक कर्मियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
0: सिवान प्रमंडल आज इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है यहाँ पर। इसमें सिवान प्रमंडल के जितने भी डाक कर्मवीर हैं जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है और उससे सिवान प्रमंडल का, उत्तरी प्रक्षेत्र का और बिहार परिमंडल का मान सम्मान बढ़ाया है, आज उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में जो भी लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है उन सारे लक्ष्यों की प्राप्ति पुनः सिवान करे और सिवान की जो यह पावन धरा है उस धरा का मान सम्मान देश के पटल पर डाक यहाँ के डाक कर्मी लेकर आए।
2: कितने लोगों को सर सम्मानित किया जा रहा है?
0: आज लगभग 100 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है।
2: सर गोपालगढ़ सिवान दोनों जिले के लोग हैं?
0: जी, इसमें दोनों सिवान प्रमंडल के अंदर अंतर्गत दो रेवेन्यू जिला है, एक आपका सिवान दूसरा गोपालगंज।
22: सर ये लोगों को डाक विभाग के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
0: अभी जैसे अगर हम मोटा मोटी तौर पर देखें तो स्मॉल सेविंग्स है हमारे पास जिसके अंतर्गत 9 सेवाएं हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट हो गया, रिकरिंग हो गया, मंथली इनकम हो गया, सीनियर सिटीजन हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, NSC, KVP, इसके अलावा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आधार की सेवा, पासपोर्ट की सेवा, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इंटरनेशनल मेल, आप जिस भी सेवा की बात करें वो सारी सेवाएं डाकघर से उपलब्ध हैं, क्योंकि अभी जो 2023 में नया जो कानून पास हुआ डाक विभाग का, उसके अंतर्गत डाक विभाग को एक सर्विस डिलीवरी विभाग बना दिया गया। पहले यह केवल डाक वितरण का विभाग था, लेकिन उसके बाद से इसको कानूनी दर्जा मिल गया कि हर तरह की सेवाएं वो नागरिकों तक पहुंचा सकता है। तो जितनी भी सेवाएं हम दे रहे हैं और उसको जोड़ते जा रहे हैं, और हमारी सारी सेवाएं तकनीकी रूप से भी उत्कृष्ट हैं, क्योंकि सारी की सारी सेवाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप देखेंगे हमारे डाक कर्मवीरों से आप बात करेंगे तो उनको अपना काम करने में आजकल इतनी सहूलियत होती है, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर, और इन्हीं डाक कर्मवीरों ने मिलकर यह सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उससे हमारा भी विभाग को भी फायदा हो रहा है, नागरिकों को भी फायदा हो रहा है और हमारे जो डाक कर्मी है उनको भी बहुत सहूलियत हो रही है।
23: इधर मोहम्मदपुर के काशी टेंगराही में सरकारी ITI कॉलेज पर 4 जून को जॉब मेला का आयोजन हो रहा है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच गुजरात की एक कंपनी 50 लोगों का चयन करेगी। इस दौरान प्रोडक्शन ऑपरेटर के लिए चयनित लोगों को 19,500 रुपए की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों की योग्यता ITI पास होनी चाहिए, साथ ही मैट्रिक और इंटर पास अभ्यर्थियों की इसमें आवश्यकता है। इच्छुक व्यक्ति जिला नियोजनालय में जाकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है और गुजरात की कंपनी में रोजगार का सुनहरा अवसर पा सकता है। इधर गांधी महाविद्यालय में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली की खबर चल रही है। बताया जा रहा है कि नियमों को ताक पर रखकर नियुक्तियों में धांधली की शिकायत शिक्षा विभाग को मिली है, जिस पर अब शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए DPO प्रवीण कुमार प्रभात ने मामले को गंभीरता से लिया है और कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य से नियुक्ति से संबंधित सभी रिकॉर्ड और साक्ष्य को 2 दिनों के भीतर तलब किया है। बताया जा रहा है कि महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य अशोक कुमार सिंह और प्रदीप कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग को लिखित रूप से शिकायत किया था और इसी शिकायत के आधार पर अब जांच पड़ताल किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने आज भी अपने कार्यालय में जनता की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इधर माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास और SC/ST एक्ट में फरार चल रहे एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी विनोद भगत पिता कृष्णा भगत, जो मधुसरिया थाना माझा का निवासी है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था और इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
24: जिला प्रशासन ने पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन शुरू किया है। इसी को लेकर 2 जून को विजयपुर प्रखंड में और 16 जून को कुचायकोट प्रखंड में पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन होगा। इसी तरह 7 जून को भोरे और हथुआ प्रखंड में होगा, 21 जून को सिधौलिया और बैकुंठपुर में होगा, तो वहीं 4 अगस्त को फुलवरिया उचका गांव तथा थावे प्रखंड में भी पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन होगा और बरौली में 18 अगस्त को पंचायत सहयोग शिविर का आयोजन होगा। इस शिविर में जनता की समस्याओं को सुना जाएगा और उसे तुरंत निष्पादित करने का प्रयास किया जाएगा।
23: आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में इन्वेस्टर मीट एवं सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी तथा PMFME और PMEGP तथा PM विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की गई। इसमें उद्यमी कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्यपालक अभियंता, गन्ना पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सहित तमाम संबंधित लोग मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी ने सरकार के मंशा के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर लागू करने की दिशा में सभी पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों से इन संचालित योजनाओं के संदर्भ में आवश्यक समीक्षा भी की और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बाद उद्योग के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए तमाम नीतियों पर काम करने का निर्णय लिया गया।
24: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कटिया नगर पंचायत के अस्थाई समिति का चुनाव हुआ संपन्न। 50,000 के इनामी को पुलिस ने मारी दोनों पैरों में गोली। लघु जल संसाधन मंत्री ने सुनी जनता की शिकायत। 100 डाक कर्मियों को किया गया सम्मानित। और 4 जून को गुजरात की कंपनी लगा रही है रोजगार मेला। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
25: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
26: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
27: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575।
28: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PMSuryaghar.gov.in।
29: हर घर सूर्य घर।
30: सुनिए सुनिए सुनिए,
31: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
30: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
31: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
30: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: एडमिशन फ्री, एडमिशन फ्री।
8: कहाँ पर?
6: अरे CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल चवही खास गोपालगंज,
8: जहाँ मिलता है क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग एनवायरनमेंट, एक्सलेंट एकेडमिक गाइडेंस और गोपालगंज के टॉप परफॉर्मर्स तैयार करने की परंपरा।
6: यहाँ नर्सरी से 12th तक आधुनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम। फिलहाल नर्सरी से 9th और 11th क्लास में एडमिशन शुरू है,
8: तो देर ना करें। ऑफिस टाइम सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: ज्ञानदा इंटरनेशनल स्कूल, पता छवही खास NH 27 गोपालगंज, कॉन्टैक्ट 9852636537 और 9835569 65।
9: प्रसाद क्लिनिक,
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
11: रियाज रेट्रो।
12: नहीं मना रही मैं अमिताभ बच्चन का बर्थडे, नहीं मना रही, नहीं मना रही, नहीं मना रही बस, और तब तक नहीं मनाऊंगी जब तक उनसे बात नहीं होती आमने सामने। बहुत हो गई ये दूर की डिवोशन, बहुत कर ली खामोश मोहब्बत, अब या तो वो मेरे जुनून से खींचे चले आए वरना भाड़ में जाए। आया भाड़ में तो नहीं भेज सकते, सॉरी, उनको हमारा क्या होगा अगर वो भाड़ में चले गए तो। अमिताभ बच्चन का जन्मदिन 11 अक्टूबर, मैं रिया आपके साथ, और मैं उनकी सालगिरह नहीं मना रही। अब कह दिया तो कह दिया।

0: जा रहा था नहीं आ रहा था नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो, अरे भागो।

0: सच में ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, जब उनसे ही मुलाकात ना हो पाए जिनसे मिलने के इंतजार में आधे हो गए। राजेश रोशन, आनंद बख्शी और श्रीमान बच्चन जिनका बर्थडे कहा ना, मैं नहीं मना रही। क्यों मनाऊं? हम नहीं खेलते।
1: रियाज रेट्रो, ओनली ऑन गाना।
0: अब तो हम तभी खेलेंगे, अब तो बच्चन साहब का बर्थडे तभी मनेगा रियाज रेट्रो पर जब उनका इंटरव्यू मिलेगा। इतनी मोहब्बत में तो इतनी सी जिद लाजमी है ना। और वैसे भी आज तो हम जा रहे हैं कहानी बाजों की तरफ, ऐसे सिडक्टिव स्टोरी टेलर्स जो अपने किस्सों के जाल में फंसा ले, हमें गुमराह कर दे, कहानियों के माया जाल में हमें ऐसे बांध दे कि हम खुद फैक्ट और फैंटेसी में फर्क ना कर पाए। क्यों कर रहे हैं हम आज ये? क्योंकि हमारी कहानीबाज फिल्म रिलीज हो गई है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा जल्दी से, रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट लार्ज शॉर्ट्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, प्रोड्यूस्ड बाय येलो बल्ब्स। आशीष विद्यार्थी जो पिछले 3 साल से यहाँ हमारे कहानीबाज रहे हैं, अब वो पर्दे पर भी अपना डार्क मैजिक दिखा रहे हैं। पहले 2.5 दिन में ही 2.5 लाख व्यूज क्रॉस हो चुके थे। मैंने कहा भी था उस वक्त ट्विटर पे और फेसबुक पे कि ये फिल्म है कि सनी देओल का हाथ। पर अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि कहानीबाज द फिल्म सिर्फ बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा, इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन, ओपिनियंस, व्यूज पढ़ के लगता है इस फिल्म ने लोगों को सोच में डाल दिया है। किस बारे में? वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप फिल्म देखेंगे। अब हिंदी सिनेमा में ऐसे कहानीबाज, मिस्टीरियस स्टोरी टेलर्स बहुत रहे हैं, कोई एबनॉर्मल तो कोई पैरानॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल अशोक कुमार इन जूल थीफ, द मास्टर टेल स्पिनर, या फिर हेमा मालिनी और रादर उनका पोर्ट्रेट इन महबूबा, राजेश खन्ना इन दुश्मन, गुमनाम में वो डायरी, एंड देन ऑफ कोर्स हमारी चैंपियन कहानीबाज साधना, चाहे वो मेरा साया हो या वो कौन थी। टेक्निकली दो वो कौन थी में तो प्रेम चोपड़ा है असल कहानीबाज। चलिए आज इंस्टेड ऑफ लग जा गले या नैना बरसे, आपको वो कौन थी का वो रोमांटिक ड्यूएट सुनाती हूँ जिसमें अनयूजुअल बात ये है कि मनोज कुमार के साथ हेलेन है उनके लव इंटरेस्ट। वेरी स्वीट एंड रिफ्रेशिंग टू सी हेलेन लाइक दैट।

0: बहुत बिलेटेड ही सही, अब लग रहा है लता जी का जन्मदिन मन गया। द स्टनिंग मदन मोहन कॉम्पोजिशन, नैनो में बदरा छाए, बोल राजा मेहंदी अली खान, फिल्म मेरा साया। और उससे पहले वो कौन थी के गीत छोड़ के तेरे प्यार का दामन में भी एग्जैक्टली ये सारे के सारे सेम लोग, बस लता जी के साथ उसमें महेंद्र कपूर भी।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: रियाज रेट्रो पर इस वक्त मेरे साथ बहुत ही डेंजरस कहानीबाज हमारे आशीष दा, वेलकम टू रियाज रेट्रो।
5: रियाज रेट्रो में आप सबका स्वागत है। रिया, आपका भी स्वागत है।
0: अरे शुक्रिया शुक्रिया, मेरे घर में मुझे
5: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: मुझे ऐसे स्वागत अभी तक किसी ने नहीं किया है।
5: दरअसल जो कल तक नहीं हुआ वो आज हो गया रिया।
0: करेक्ट, क्योंकि कहानीबाज के साथ अक्सर ऐसा होता है। बधाई हो, लाखों व्यूज हो गए हैं हमारी फिल्म के, लोगों को डरना क्लियरली बहुत पसंद है।
5: और मेरे ख्याल से जिसको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसको भी खड़े होकर सॉरी और फिर थैंक यू कहना चाहिए, जिसका नाम है रिया। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू दिस मोमेंट, जिस तरह से आपने पिछले 3 वर्षों में इस जर्नी में साथ दिया है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिया, रियली हैट्स ऑफ टू यू।
0: थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपने मुझसे शुरू में कहा था कि तुमने मेरे बारे में क्यों सोचा। मतलब मैं एक स्टोरी टेलर या नरेटर नहीं, मैं वॉइस एक्टिंग चाहती थी और मुझे पता था कि आपसे बेहतर ये कोई नहीं कर पाएगा। और ये पॉडकास्ट,
5: बहुत शुक्रिया आपका,
0: इसको आवाज से, अपनी बातों से, अपने नैरेटिव स्टाइल से आपने 3 साल कहानीबाज को जिंदा रखा है और उसको उभारा है और फिर पर्दे पर उसको उतारा है। व्हाट इज योर पर्सनल रिलेशनशिप विथ दिस एंटिटी कॉल्ड कहानीबाज नाउ?
5: आई लव थिंग्स व्हेन दे हैपन विद वेलोसिटी, व्हेन ब्राइट माइंड्स मीट। ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद कहानीबाज। ऑन द अदर हैंड, एक चीज जो जिसने मुझे इंटरेस्ट बनाए रखा है इसमें, कि जिस आप लोगों ने जिस तरह से इसका साउंड डिजाइन किया है एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मतलब उसने इस पॉडकास्ट को ये खास बनाया, सो हैट्स ऑफ टू द फिनोमिनल टैलेंट।
0: जी, आई थिंक द राइटर, द ऑडियो डिजाइनर, उनका बड़ा बहुत योगदान रहा है।
5: सो मेरे ख्याल से पता है, आप उनका नाम लेंगे और मैं ताली बजाऊंगा। रेडी, 1 2 3 गो।
0: राइटर सौरभ भ्रमर,
5: सौरभ भ्रमर द मैजिशियन कदर कलम। रियली
0: थैंक यू। और आपने जो इसको हर कैरेक्टर आप ही प्ले करते हैं, हमने कभी दूसरा तीसरा, हमने कभी किसी और वॉइस को कभी यूज ही नहीं किया, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो भूत हो। सो थैंक यू। आज हम रियाज रेट्रो पर क्लासिक हिंदी सिनेमा की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े कहानीबाज रहे हैं, यू नो, लाइक अशोक कुमार, जूल थीफ, और यू नो, इतने वो जो ब्लैक एंड व्हाइट ईरा और फिर अर्ली 60s 70s में जो वो हु डन इट्स बनते थे ना, जिसमें कोई कहानी सुनाता था, चाहे वो गुमनाम हो, चाहे वो महबूबा हो, कभी भूत बोलता था तो कभी चोर।
5: आई गेट वेरी स्केयर्ड ना रिया, बाय द वे, मैं खुद, मैं बिल्कुल कोई, मतलब डरावनी कहानियों से बहुत डरता हूँ, और आज मैंने एक तरीका निकाला है।
0: हाँ, कौन मानेगा हमारा कहानीबाज डरता है।
5: दो अंगूठों से अपने कान बंद करता हूँ और बाकी चार उंगलियों से हाथ हो जाती है, मत डराओ।
0: तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं हम सब कहानीबाज है ना?
5: हाँ, डेफिनेटली। मेरे ख्याल से न सिर्फ हम कहानीबाज है, हमारे आसपास बहुत सारी कहानियां घट रही है
0: जी।
5: और हम में से कई उन कहानियों को समझ पाते हैं, देख
0: जी,
5: पाते हैं
0: जी।
5: और मेरे ख्याल से ये एक कैरेक्टरिस्टिक है यू नो आर्टिस्ट की, जहां पर हम लोग वो सब एस्पेक्ट्स देख पाते हैं जो कई बार कईयों को ना दिखे। और मेरे ख्याल से कहानीबाज भी वही करता है, कहानीबाज कहानियां सुनाता है उसी दुनिया की जिसमें आप और हम रहते हैं
0: जी।
5: लेकिन वो कुछ ऐसी कहानियां लेकर आता है जिसमें आप कहते हैं वाह ये क्या था भैया
0: जी। जैसे कि हमारी फिल्म भी है ये, इट रेजेज अ लॉट ऑफ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट आई वांटेड टू

0: अब रैंडम स्केरी इंटरेक्शंस क्या हुए हैं, तो कुछ लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई है।
1: भेजी तो हम भी सुना देते हैं।
0: वंशी ने लिखा कि हमारे स्कूल टाइम में एक किस्सा था कि कैसे एक कैबी एक हॉन्टेड ब्रिज के बारे में बताता था। बाद में एक रूह ड्राइवर से पूछता है कि उसका पांव सीधा है कि उल्टा। आई वुड लव टू हियर द सेम स्टोरी फ्रॉम आशीष अगेन। अब ये कहानी मैंने तो अपने बचपन में नहीं सुनी, आपने सुनी है क्या?
1: या, हाँ, तुमने यदि पढ़ना बंद किया तो मैं अपने कान खोल लूं।
0: ये वंशी तो आपके मुंह से ये कहानी सुनना चाहती
1: है। आई नो वंशी, दिस साउंड्स लाइक अ स्कैरी वन माय फ्रेंड। अरे आपको सबसे ज्यादा चीज डराती क्या है कि आप जो कहानी सुनते हैं आपको लगता है कहीं ये बात सच ना हो जाए, और पता नहीं किसी और के साथ आपके साथ में कहीं सच हो जाए। And yeah, I think we can always try this story. It is haunting, and we could always try that. आपने ट्वीट भेजा है, मैं उसको पढ़ता हूँ। ये स्वरचिता ने लिखा है
0: जी।
1: हाय रिया, मेरे लिए तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल बहुत ही खतरनाक था। कैबी डेस्टिनेशन पर पहुंचा और पहुंच के उसने पूछा, आप अकेली थी क्या? मैंने सोचा इतनी देर उसे क्यों लगा कि गाड़ी में कोई और भी था।
0: उसको रियर व्यू मिरर में कोई और दिख रहा था
1: जो तुम्हें नहीं दिखा। सुनिश्चिता, आप मुझे बताइए, आप उस कैबी को अगर फोन करके पता करेंगे क्या उसको जो आपके साथ बैठा था उसके पांव भी उल्टे थे क्या?
0: ओए, आप कहानियां मिला दो आपस में आशीष दा।
1: आई टेल यू वंशी की कहानी स्वरचिता की कहानी से मिलाना पड़ेगा।
0: इसी बात पर एक परफेक्ट गाना मिल जाए, गुमनाम है
1: बहुत जरूरी है,
0: बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई।

0: एक ही साथ डिलाइटफुल और फॉर्मिडेबल, ऐसे थे मन्ना दे जी। इतना भारी टैलेंट जो बड़ा हल्का बैठता था उन पर, ही कैरीड इट सो लाइटली एंड एफर्टलेसली। फिल्म महबूबा, आरडी आनंद बख्शी, गोरी तेरी पहचनिया, एंड उससे पहले ऑफकोर्स गुमनाम का टाइटल ट्रैक, वो फिल्म जो एगाथा क्रिस्टी के एंड देन देयर वर नन पर बेस्ड थी। सिग्नेचर लता जी, कॉम्पोजिशन शंकर जयकिशन, बोल हसर जयपुरी।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
7: आपको डरा दिया ना हमने अच्छे से भूतिया गाने सुनाकर आशीष दा। Are you fully in the mood now of कहानीबाज?
8: I'm completely, completely, completely zone में हूँ. I'm in the zone.
7: तो एक बात, जो बात हमने थोड़ा सा उसके बारे में बात की थी गानों से पहले, कि इतने लाखों व्यूज से तो हम खुश ही हैं, हम खुश तो बहुत होंगे आज, पर उसके अलावा एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है चाइल्डहुड स्कार्स, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के बारे में। अब हम स्पॉयलर्स तो नहीं देना चाहते उनको जिन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी।
8: तो आप लगातार लगी हुई है कि आप स्पॉयलर
7: दे रही हैं। अच्छा चलिए, मैं नहीं देखी,
8: स्पॉयलर अलर्ट भी नहीं दे रही हैं।
7: पर ये जो बातचीत शुरू हुई डीपर इश्यूज के बारे में, इसकी उम्मीद शायद हम में से किसी को नहीं थी कि ये कॉन्वर्सेशन शुरू।
8: एग्जैक्टली, इंटरेस्टिंग बात यही है कि हम लोग जब कोई चीज लिखते हैं, कोई चीज बनाते हैं, किसी चीज अभिनय करते हैं, तो हम डेफिनेटली बहुत सारे लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं।
7: जी,
8: हम लोगों ने इसके कई परत एक्सप्लोर किए थे व्हाइल क्रिएटिंग इट। जिस तरह से फीडबैक आ रहा है, व्हेन पीपल आर लुकिंग इनटू देयर ओन लाइव्स, इनटू लाइव्स ऑफ पीपल अराउंड देम, तो मेरे ख्याल से यही चीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी है आर्ट की, कि आर्ट में हम लोग कुछ सोच के, कई चीजें सोच के बनाते हैं, और जब लोग उसको देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और एक्चुअली इतना अपना लेते हैं कि उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तब वो ऐसे आयाम ढूंढ के बताते हैं कि frankly, I've been surprised, haven't you?
7: Absolutely. और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों ने ये परत, आई मीन बियॉन्ड थ्रिलर, इस चीज पे इतनी बातचीत हो रही है। आई थिंक इट सेज समथिंग अबाउट पीपल, देयर सेंसिटिविटी सोसाइटी के बारे में। हम जो कहते हैं लोग डिसेंसिटाइज हो गए हैं, ये सच नहीं है।
8: जो कहते हैं ना कि अरे बात निकली है तो, तो वो बात छेड़ी है इस फिल्म ने,
7: तो इस बात पे फिर से तालियां तो बनती है एक और इंसान के लिए,
8: बहुत जरूरी बनती है। संदीप वर्मा, कांग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, रिटन सच एन इंटरेस्टिंग थिंग, दिस व्हिच हैज जस्ट स्टार्टेड अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन।
7: जी बिल्कुल, राइटर डायरेक्टर ऑफ कहानीबाज द फिल्म। वापस आते हैं ट्वीटों पर। आज मैंने डिसाइड किया है कि अंग्रेजी अल्फाज को मैं हिंदी बनाकर छोड़ूंगी। स्टोरियां
8: वो तो हिंदी का ही अल्फाज है ना,
7: ट्वीट
8: ट्वीटा। हाँ
7: ट्वीटा,
8: ट्वीटा तो क्या कमाल कर दिया, तो किसने कहा कि अंग्रेजी है, हिंदी का ही है।
7: मेरे एक दोस्त हैं जो कहते थे ये बिजार शब्द उर्दू होना चाहिए था, फील आती है जब आप कहते हो क्या बिजारियत है।
8: क्या बिजारियत है, बात है एकदम जोर है। ये ले लिया गया रिया?
7: बिल्कुल,
8: ये बात ले ली गई, आप अपने दोस्त को बताते हैं कि बात ले ली गई।
7: हाँ जी, बहुत बिजारियत है।
8: ये बहुत बिजारियत है।
7: साजिद ने कुछ लिखा है आशीष दा।
8: हाँ, तो साजिद ने लिखा है कि एक नेपलीज कैबी ने दुबई में मुझे एक खास पैसेंजर के बारे में बताया था। दो अमेरिकन नासा साइंटिस्ट थे, वो हर 6 हफ्ते में टेक्सास से दुबई आते, एक रात दुर्जल अरब में रहते, एक खास रेस्टोरेंट में डिनर खाते और अगले ही दिन लौट जाते, और ऐसा वो सालों से कर रहे थे।
7: क्या बिजारियत है, क्या बिजारियत है,
8: क्या बिजारियत है। एंड इमेजिन इमेजिन, अब इस कहानी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ
7: जी,
8: कि वो जो पैसेंजर थे हर बार इसी कैबी को बुलाते थे और इसी कैबी से अपने को वापस एयरपोर्ट भी छुड़ाते थे।
7: कहानी बात
8: बिजारियत में कुछ बिजारियत में कुछ यू नो कुछ इजाफा हुआ है
7: जी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वेट सुनाती हूँ, ये बहुत मजेदार है। लाबनी ने लिखा है, आप शादी करके अब्रॉड सेटल होना चाहती हैं क्या या इंडिया में? नॉट सो लॉन्ग अगो विदाउट एनी प्रियम्बल मुझसे ये बात एक कैबी ने पूछा जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड मैरिज ब्रोकर भी था। फिर वो मुझे एलिजिबल बैचलर्स के फोटो दिखाने लगा ऑन माई वे टू वर्क। इट वॉज हिलेरियस एंड अपॉलिंग। ही इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ हार्ड सेलिंग सम ऑफ दोज मेन टू मी, जॉब्स इन MNCs, फैमिली बिजनेस, रेगुलर यूरोप ट्रिक्स वगैरह वगैरह। जब मैंने बिल्कुल ही कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और हंसती रही, ही वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ आस्किंग कि मेरे कोई दोस्त इंटरेस्टेड होंगे क्या फिर इसमें।
8: आप बताइए मैडम क्या बात है, इट इज लाइक दोस टेलीफोन कॉल्स व्हिच यू गेट एंड देन दे से कांग्रेचुलेशंस योर नंबर हैज बीन चोजन, उसके बाद आप कहते हैं भैया नॉट इंटरेस्टेड
7: जी,
8: फिर वो कहते हैं एक्सक्यूज मी सर आप किसी फ्रेंड का नंबर देंगे।
7: हाँ.
8: No. तो इस तरह से जस्ट इमेजिन व्हाट ऑल थिंग्स दैट पीपल कैन डू व्हाइल ट्रैवलिंग। In fact, it is actually doing more with your life. It makes a lot of sense.
7: हाँ, कि आप कैब भी चला रहे हैं, marriage broker भी हैं।
8: बहुत जरूरी है। This is an interesting one, Riya. Sent by Sangeeta. So we had a freakiest experience recently. कैबी ने बस चुपचाप हमारा लगेज रखा और हम जैसे ही बैठे उसने गाड़ी भगा दी। हम उस इलाके में के नहीं थे। हमने Google Maps निकाला वेरीफाई करने के लिए और अपने होटल को पीछे छूटते देखा। ऐसा लगा बिना कुछ कहे उसने बहुत कुछ कह दिया था। You know what I have a feeling?
7: Yes.
8: मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो आदमी जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा इनकी तरफ, समझ रहे, क्योंकि उनके सर के पीछे तो बाल थे लेकिन सामने ना आंख थी ना नाक थी ना मुंह, सिर्फ चपटा था।
7: आए आए। वोल्डेमॉर्ट
8: हो सकता है
7: आशीषा, ये बेचारी संगीता वैसे डर गई थी। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसने मैप गूगल मैप देख लिया होगा, आप वोल्डेमॉर्ट बता दो।
8: और ये भी हो सकता है कि वोल्डेमॉर्ट है। तो मुबारक हो संगीता, यू आर गुड, आप ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
7: हमारे कहानी बहुत दुष्ट है
8: जी।

0: आज सच में इस कहानीबाज थीम के चक्कर में लता जी का जश्न अच्छे से मन गया और उनका बिल्कुल ही एक स्केरी हॉन्टिंग दूसरा ही रूप है ना। और ख्याल आया अभी कि वहीदा रहमान भी काफी कहानीबाज टाइप फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इट्स नॉट जस्ट अ साधना स्पेशलिटी। ये दो गाने ही ले लीजिए, बोथ हर फिल्म्स, झूम झूम ढलती रात फिल्म कोहरा, हेमंत कुमार कैफी आजमी, और कहीं दीप जले कहीं दिल ऑफ कोर्स 20 साल बाद, हेमंत कुमार शकील बदायूनी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
2: और
3: तुम ऐसे गजब के गाने सुनाते हो ना लोगों को।
2: आज तो फुल डराने के प्लान है, सबको डरा देना है।
3: तो डर लगे तो गाना सुन।
2: आशीष, आपके बहुत सारे फैंस और फ्रेंड्स हैं जो कहानीबाज सुनते हैं, जो बहुत ही पेशेंटली सीजन 3 का इंतजार कर रहे थे और बहुत शिद्दत से सुनते हैं। व्हाट आई लव इज द अटेंशन टू डिटेल इन देयर लिसनिंग। उनके लिए कुछ कहिए ना प्लीज।
3: एक चीज कहूंगा, न सिर्फ कहानीबाज के लिए जो आप लोग सुनते हैं, जैसे आपने कहा कि आप लोग बहुत डिटेल से सुनते हैं, तो हम लोग कोई भी काम जो करते हैं जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसमें डिटेल, देयर हैज़ बी डिटेल इन दैट। और जैसे मैंने कहा कि एक तरह से सिर्फ आप लोग एक कहानी सुनते हैं, इस कहानी के बनाने के पीछे काफी मेहनत गई है। There's some detailing which has gone into it. Nothing happens by chance. Yeah. You know, in a way, Riya, main kehta hun ki if you are invested in yourself, then people are invested in the thing that you speak and do. So, hum jab apne kaam mein invested hote hain, tabhi log usme invested honge. So, mere khayal se that is a takeaway for me also, and would love to share that with you all.
2: जी बिल्कुल। हेमा का ट्वीट पढ़ दीजिए आशीष दा, बहुत इंटरेस्टिंग है।
3: ये एक इंटरेस्टिंग ट्वीट है हेमा का। तो हेमा ने लिखा है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न्ड कैब ड्राइवर था। उसने कहा कि ड्राइविंग सेव्ड हिज मैरिज। उसकी पिछली नौकरी उसको घर से लंबे अरसे तक बाहर रखती और रेगुलर ओवरसीज ट्रिप्स के चलते वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पाता। आई एडमायर हिम फॉर मेकिंग सच अ ब्रेव डिसीजन। He definitely did make me consider my priorities. और इसी दौरान उसको अपने स्वीटहार्ट से फोन भी आया ये पूछने के लिए, घर कितने बजे आओगे खाना खाने। Isn't that sweet? Isn't it amazing? Yeah?
2: So can
3: you believe it? The choices people make.
2: Yeah.
3: Exactly. Exactly. The choices that he would have made.
2: अब हमारे सुनने वाले ये जानते नहीं हैं, पर मुझे पता है कि आप कितना रिलेट करते हैं ऐसे एक डिसीजन के साथ, बिकॉज आई हैव सीन हाउ यू ऑलवेज सेड फैमिली एंड फ्रेंड्स मस्ट टेक अ प्रायोरिटी इन आवर लाइव्स दैट वी शुड नेवर एवर फॉरगेट। तो मुझे पता है कि आप एक पर्सनल लेवल पेस से रिलेट करेंगे
3: कम्प्लीटली। मतलब उसको मैं इनफैक्ट लोगों से पूछता हूँ, यार तुम लोग SIP करते होगे नहीं, इसको कहते हैं ना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
2: हाँ
3: really, you know, really I ask people that have you been systematically investing in friendships,
2: friends,
3: systematically investing in relationships,
2: absolutely,
3: systematically investing in people that you have met.
2: Aur
3: mere khayal se ye ek cheez hai jo aapko abad rakhti hai.
2: Absolutely, abad to rakhta hi hai aapko, aur mushkil halaat mein isse badi poonji nahi hai jis pe aap fall back.
3: Absolutely, so beautifully put. Yeah, ek baat batao, tum jo baat bolti ho बहुत अच्छी सुनाई देती है, शायद तुम्हारी आवाज की वजह से ऐसा है ना। तुम जो भी बात बोलती हो बहुत मतलब कमाल लगती है, सीखना पड़ेगा तुमसे।
2: अच्छा, थैंक यू। एक आखिरी ट्वीट पढ़ देती हूँ आस्था का।
3: जरूर।
2: वो कहती हैं कि कुछ साल पहले हिमाचल में हमारे ड्राइवर ने एक स्टोरी सुनाई कि 20-25 साल के 3 लड़के उसके साथ कसोली आए और वहां ड्रग्स में उनके सारे पैसे खत्म हो गए, ड्रग्स उधार पर लिए, फिर कैसे इसी ड्राइवर ने उन्हें ड्रग डीलर से पीछा छुड़वाया और वहां से भगाया और चंडीगढ़ जाने के और खाने के पैसे ड्राइवर ने इन लड़कों को दिए. इट वॉज सो वियर्ड. आस्था वियर्ड भी है और अमेजिंग भी है. मेरे साथ लंदन में पता है क्या हुआ? मैंने उबर बुक किया और उसपे आया यम विल बी विथ यू इन 4.5 मिनट्स. यमराज आए मुझे लेने. मैंने कहा लो जी हो गया मेरा काम तमाम. तुम गाड़ी में बैठी, मैंने कहा तुम्हें पता है इंडिया में तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? He was from Afghanistan. He said yes madam. Every Indian who sits in my cab tells me.
3: दोबारा मत बताना, सब बता चुके हैं.
2: करेक्ट. He said in my country. और सोचिए, he said in my country it means king.
3: क्या बात.
2: जाते जाते आशीष दा, ये पॉडकास्ट जब हो रहा है ना, ये 10-11 अक्टूबर के आसपास जो रेखा जी का भी जन्मदिन है और अमिताभ बच्चन का भी जन्मदिन है, एक फिल्म थी दो अनजाने जिसमें रेखा भी थी और बच्चन साहब भी थे और कहानीबाज की हदें पार कर दी थी बच्चन साहब ने इस फिल्म में. ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई उन्होंने उस पूरी फिल्म में. तो दो अनजाने फिल्म से ये गाना कहीं दूर मुझे जाना है, ये मैं आपके लिए लगा रही हूँ आशीष दा, बिकॉज अमिताभ बच्चन इज द अल्टीमेट कहानीबाज इन दिस फिल्म.
3: जरूर.
2: आशीष विद्यार्थी ऑन रियाज रेट्रो आवर कहानीबाज, थैंक यू सो मच हमारे साथ वक्त बिताने के लिए.
3: बहुत बहुत शुक्रिया रिया, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड शेयर टू यू एंड योर अमेजिंग लिसनरशिप. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया. एंड वेर एवर यू आर, कीप रिमेम्बरिंग दैट देयर आर टेल्स टू बी हर्ड एंड लिसन्ड.
2: जी बिल्कुल, थैंक यू.
3: बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.

बच्चन रेखा बर्थडे पार्टी में गेट क्रैश करवा दिया जया भादुड़ी से। आज की रात कोई आने को है, फिल्म अनामिका, द सिजलिंग हेलेन और साइड में बैठे संजीव कुमार और जया जी, आवाज आशा जी, संगीत आरडी बोल मजरू साहब। अनामिका में तो वैसे भी जया भादुड़ी अल्टीमेट कहानीबाज थी, क्या क्या किस्से पिरोए वन आफ्टर द अदर, हमारे ना कहानीबाज की ही तरह बिल्कुल बहरूपिया। फिल्म में तो एक्चुअली तीन चार नाम ही थे उनके, अनामिका, कंचन, अर्चना, मिसेस कश्यप, हे भगवान। उम्मीद है अगर आपने अभी तक कहानीबाज फिल्म नहीं देखी तो अब देख लेंगे। मेरी खातिर, गाना से रिश्ते की खातिर, आशीष विद्यार्थी के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस की खातिर, कहानीबाज तो अल्टीमेट अमिताभ बच्चन भी रहे हैं कई फिल्मों में। उनका जन्मदिन आया चला गया, मैंने नहीं मनाया और नहीं मनाऊंगी जब तक उनका इंटरव्यू ना मिले। कम ऑन, a girl can dare to dream, dare to love.

सच के सर जब धुआं उठे तो झूठ आग में जला हुआ है। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब।

है तो काला होगा, मौत का ही मसाला होगा। चूना कत्था जिंदगी तो सुपारी जैसा छाला होगा। बाप ने जना नहीं तो बापियों ने पाला होगा। भूख से निकल गया था, भूख से निकाला होगा। भला बुरा, बुरा भला, खोटे पर सब खरा।

जो अब कहीं नहीं है उस पे भी तो यकीन नहीं है, रहता है जो फलक फलक पे उसका घर भी जमीन नहीं है। अक्ल का ख्याल अगर वो शक्ल से भी हसीन नहीं है, पहले हर जगह पे था वो

छोटे पर सब खला बला है, भला बुरा बुरा भला, छोटे पर सब खला पड़ता है।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: पत कभी कभी।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केन्द्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भेजा बुझने।
1: अच्छा तो चला।
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
3: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: हाँ माई,
2: कहाँ बने बेटा? कब से फोन लगा था?
1: अरे अभी दिल्ली में बानी, लाल किला के पास।
2: नौकरी उकड़ी मिलल की ना?
1: अरे मिल जाए नौकरी, बस तुम्हारा आशीर्वाद हमारा साथ रहे के चाहिए।
2: अरे हमर लाल दिया।
3: अरे यार फिर अगले क्रीम।
1: ठीक बा माई, हम बाद में करता नहीं फोन।
2: का है बेटा? का
1: अरे दिल्ली में एगो बिल्ली पीछे पड़ल बा।

0: अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
2: आए, उठाओ भकवेल का बरे रे।
3: आए, उन्हें से कैसे आगे रे लगाओ।
2: बरका व्यागा बढ़।

0: साला काम कर यार, बड़े चुपचाप काम कर, नहीं तो तू जो यहाँ से अमनी का कॉल है हम। मैं तू है साला।
1: जब दम रहो तो लेके कहना भाग के ले। अब कुछ हो के वाला नहीं के, लड़की के कल बढ़िया था होता।
0: ये साला खुद कटा, ये सब के कटवाई।
1: जो बल्ले

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
2: का भाई ते इतना खुश बड़े, तोरा कुछ पता नहीं का?
3: काहे परेशान बड़े भाई?
2: अरे आज खुशी के शादी हो रहल बा।
3: भक
2: हाँ,
3: इका बोला तारे?
2: आ दुख के बात दी बा कि आजुए बारात आवता।
3: अच्छा,
2: चल जाई तोरा के छोड़ के।
3: उ तोरा भाई के मोहब्बत है, इतना आसानी से ना जाए दे।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते

0: सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
2: हमको गाना सुनना है।
1: गाना सुना देंगे।
2: नदिया के पार कौन दिशा में ले चला रे बरहिया।
1: फिर से बोले।
2: नदिया के पार
1: जी
2: कौन दिशा में लेके चला रे बरहिया।
1: ओके, वैसे आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम मनोज कुमार है
1: जी। और आप कहाँ से?
2: हम मुंगेर जिला के ठाकुर से बोल रहे हैं, गोबरा। तीसरा कॉल है, दो दिन हम नहीं लगा रखे बीजी थे
1: जी। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंजिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो
1: ठीक ठाक बनाई
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: मैं बोल रहा बूटा सिंह मान नत्त रोड तलवंडी साधो डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब
0: जी। क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक बने, बहुत बढ़िया, गर्मी बहुत पड़ रही है।
0: अच्छा, तो अपना फरमाइश बताइए।
1: जब प्यार की चीजें होता है एक गाना ना कोई भी सुना दो।
0: किसको सुनाना चाहते हैं?
1: ये बने मेरे आगे महिंद्र भट्टी मंडी गला तो जगदीश राय गर्ग मानसा तो सतीश मगलानी मलोड़।
0: जी ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत
1: ओके ओके ओके ओके।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
5: साउंड फिल्म का गाना चला दीजिएगा।
6: कौन सा?
5: साउंड फिल्म लगन लगी।
6: अच्छा, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: थैंक यू मैम।
1: क्या नाम है आपका?
0: अनिल बात कर रहा हूँ, छोटपुर से।
1: अच्छा, क्या हाल है?
0: बस बढ़िया, अपना बताइए।
1: क्या हो रहा है फिर?
0: काम कर रहे हैं अभी।
1: अच्छा, फिर क्या फरमाइश है आपकी?
0: फरमाइश है कुमार सानू का, कोई भी गीत बजा दीजिएगा।
1: आप अपने पसंद से बता दें।
0: मेरा पसंद?
1: जी,
0: मेरे पसंद से बजा दीजिएगा ना, कोई भी बजा दीजिएगा, उनका तो सारे गाना अच्छा है।
1: और ये गाना आप किस किस को सुनाना चाहते हैं?
0: सारे लिसनर्स को आपको।
1: ओके,
0: और सुनिए ना, ये वाला सुना दीजिएगा,
1: बताइए।
0: कभी जो भूल ना चाहूँ, न जाने क्यों मेरे दिल पर मुझे तुम याद आते हो।
1: ओके
0: जी,
1: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: पानी के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो,
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: जी नमस्कार।
5: नमस्कार, आपका नाम?
6: पचपैरा से भोला राय बोलते हैं।
5: जी बोलिए, क्या हाल है?
6: ठीक तो है।
5: तो क्या फरमाइश है आपकी?
6: आप फरमाइश है जिंदगी के न टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, इसी गाना को बजाना है।
5: ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
6: आप सुनिएगा, रेडियो रिमझिम का पूरे परिवार सुनेगा, हम सुनेगा।
5: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: जी जी नमस्ते।

0: हेलो,
1: सलाम अलैकुम मैम।
0: सलाम अलैकुम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: अब बताइए क्या हो रहा है।
0: कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं। नाम
1: बताए।
0: अच्छा, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी।
1: हिंदी सॉन्ग है, बातों ने जादू किया
0: जी,
1: बन बैठा तू मेरा वही वाला।
0: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: रेडियो रंजन सुनने वाले सभी श्रोता को और आपको।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: ठीक है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
3: हम किस्मत भूल सके
2: जी, क्या हाल है आपका?
3: ठीक बा, बहुत खाना हो बोलता है
2: भारती।
3: ठीक
2: बानी ना?
3: हाँ ठीक बने।
2: फिर बताए क्या गाना सुनने के चाहे?
3: पुरान कौआली सुना दियो, चौधरी के चाल के सुना दियो।
2: अच्छा ठीक बा, सब गाना प्ले करते नहीं, सबके साथ सुनत रही रेडियो रंजन में कॉल करे खातिर आपके धन्यवाद।
3: ठीक बा।

0: हेलो नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ।
1: जी आपका घर कहाँ है?
0: जी मैं ग्राम डुमरामा हुआ, जिला नालंदा, बिहार, थाना सामा।
1: क्या हाल है आपका?
0: बस बढ़िया जी, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है। फिर क्या हो रहा है अभी?
0: बस अभी आराम कर रहे हैं दोपहर में।
1: अच्छा, फिर बताएं क्या फरमाइश है आपकी?
0: मुझे लोहा फिल्म का गाना सुनना था मैडम।
1: गाने का

0: जॉन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो।
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो,
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: हाँ हाँ, मैं राम नरेश चौधरी बोल रहा हूँ बरगछिया से।
5: बोलिए।
6: एक तो गाना सुनना है जी।
5: कौन सा?
6: फिल्म का तो नाम है रास्ते प्यार की।
5: हुँ?
6: गाने का बोल है ये वक्त न खो जाए बस आज ये हो जाए। एक लाइन गाऊँ क्या?
5: जी बिल्कुल गाइए।

0: यही गाना का।
1: आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं।
0: हाँ गाते अच्छा चलता है।
1: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: सबसे पहले तो आपको सारे लिसनरों को, मैं नया नया पहली बार जुड़ा हूँ जी।
1: अच्छा,
0: वैसे तो मैं जानता हूँ सभी के नाम, लेकिन एक ही बार सभी को बोल रहा हूँ, सभी सुनेंगे। गाना बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत रेखा और जितेंद्र जी का फिल्माया गया।
1: अच्छा, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। जी जी, धन्यवाद।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम।
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: क्या सुनना है मैडम?
1: आप अपना नाम बताइए।
0: हमारा नाम मौलादीन मियां है।
1: कहाँ से?
0: कैथोलिया से बोल रहा हूँ, सासम से कैथोलिया।
1: अच्छा, कैसे हैं?
0: ठीक है। अच्छा, तो गाना सुनवा दी।
1: कौन सा वाला बताइए?
0: बासुड़िया अब यही पुकार।
1: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
0: साहिबा खातून है, सनाज खातून है, गुलाबता खातून है, हसीना खातून है, जोहरा खातून है, जमशेद आलम है, इरफान अली, अरमान अली, ये सब सुनना चाहते हैं।
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो मैम,
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: जी मैम, मनन कपूरपुरा से मैं बोल रहा हूँ।
5: जी क्या हाल है आपका?
6: बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है। आप कैसी हैं?
5: मैं ठीक हूँ।
6: चलिए, दूसरी बार आपसे बात हो रहा है।
5: जी
6: तो आप गाना सुनवा दीजिए कोई।
5: कौन सा गाना सुनेंगे?
6: ये हाथे मेरे साथी का गाना, नफरत की दुनिया छोड़ के रहना मेरे यार, वो गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
5: ओके, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
6: पहले तो आपको और हमारे घर में जो जितने सुनने वाले लोग हैं और जितने जो रेडियो प्रेमी है रिमझिम का, उन लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ गाना को।
5: जी बिल्कुल, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
6: ओके, थैंक यू।

0: हेलो, बहुत
1: हेलो,
0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैडम
0: नमस्ते, आप अपना नाम बताइए।
1: जी। नेहा बोल रहा
0: नेहा जी, क्या हाल है आपका?
1: है? ठीक है, अपना बताइए।
0: मेरा भी
1: आपका
0: ठीक है।
1: अच्छा हो गया?
0: हाँ, आप कर ली?
1: हाँ, हमने नाश्ता कर लिया।
0: तो क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश यही है, कुछ नहीं मिले सारी चमक रहा है। यही गाना
0: अच्छा, तो ये गाना आप किसको सुनाना चाहती हैं?
1: आपको सबसे पहले दिखाई दोस्त सुनते हैं सबके साथ।
0: जी ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ। रेडियो रुमझी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन टिंडे बजती है तो कहते हैं हेलो,
3: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494। जी हाँ, 80029494। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी हेलो।
7: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या नाम है? क्या हाल है?
6: ठीक है, अच्छा है। गाना सुना दीजिए।
7: बताइए
6: जी, आप मर्जी से सुना दीजिए।
7: ये फरमाइश तो है, तो आप अपनी पसंद का गाना बता दें।
6: खेसारी लाल को हिंदी में।
7: कौन सा सॉन्ग?
6: आप अब इतना पता नहीं उतना गाने के बारे में, मैंने आप अपना मन से गा दीजिए, बता दें।
7: अच्छा जी, ठीक है, मैं अपने मन से चला दूंगी फिर। और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
6: जी मैम, पहले आपको।
7: जी,
6: जो जुड़े इसमें सब कोई को।
7: अच्छा ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगजिम में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: आप भारती बोल रहे हैं ना?
0: जी, आपका नाम?
1: अनिल कुमार मिश्रा, दिल्ली।
0: अच्छा, क्या हाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: मेरा ठीक है। क्या हो रहा है अभी?
1: काम हो रहा था, चाय पी रहे थे तो मैं सोचा कि आज भी अपनी हाजिरी लगा ले।
0: जी बिल्कुल, फिर बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: बबीता सागर का कैसन बारा लक्ष्मण देवरवा।
0: अच्छा, और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: इतना लिस्नर है, सारे सुन लेंगे।
0: फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone din de bajte hai to kehte hai hello.
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम

0: विक्रम। हेलो, मैं विष्णु।
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी सर, क्या नाम है आपका?
1: दिनेश कुमार।
0: कहाँ से?
1: तीसरा नारायण से
0: जी। क्या हाल है?
1: बढ़िया है, आपने बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। क्या हो रहा है फिर?
1: क्या हो रहा है, घर में सोए हैं, धूप निकला है बहुत तेज।
0: जी धूप तो बहुत ज्यादा है। फिर बताएं। मेरा बढ़िया है।
1: और अभी बहुत देर से मेरे कॉल लगा है।
0: फिर बताएं।
1: गाना बजा दीजिए, हिंदी सॉन्ग बजा दीजिए, अपना पसंद है कोई भी।
0: अपनी पसंद बता दें, कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
1: अपना पसंद है कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। वो हिंदी हमने तो बता दी है, हिंदी बजा दीजिए, कोई भी जो अपने आप सुनती है वही बजा दीजिए।
0: ठीक है फिर। और ये गाना आप किसको सुनाएंगे?
1: सब लोग का डेडिकेट रहेगा, दीदी को, सोनी मैम को, आपको रहेगा, डायरेक्टर सर को, सोनू सर को, पूरा रेडियो में।
0: और आप नहीं सुनिएगा?
1: नहीं तो मैं तो सुनेगा मैं।
0: ठीक है फिर, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: ठीक।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्कार भारती जी।
0: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम निर्मलेश कुमार शर्मा, मैं दीना से बोल रहा हूँ।
0: जी, क्या हाल है?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बस रेडियो से गाना सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, तो क्या फरमाइश है आपकी?
1: गाना सुन रहे हैं।
0: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं?
1: वो गाना नहीं है, चंडाल पिक्चर का गाना है, कबूतरी बोले कबूतर से।
0: जी,
1: वही गाना सुनना है।
0: और ये गाना आप किसको सुनाना चाहते हैं?
1: आपको और छतपुर से अनिल जी है, छतपुर से गुड़िया जी है, निर्माला जी है, प्रवेश मनोज शर्मा है, और मेरे पपे भैया है, और सोलर बिपिन मास्टर है, और साथ में हमारा भंडारी भी सुनना है।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: रवि गुप्ता जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ, डर सा लगता है, घबरा जाता हूँ। अपने आप को शांत करने के लिए
1: टाइम क्यों देते हो सोचने का? टाइम क्यों देते हो उसे? राधा राधा सोचवाओ जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। टाइम क्यों देते हो? तुम्हारे सोचने से होगा। राधा राधा राधा राधा, वर्तमान में जो कार्य उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए। सामने जो कार्य आया है, सामने जो कर्तव्य आया है, उसको धैर्य पूर्वक कीजिए और सोचने वाले डिपार्टमेंट में सोच डालो राधा राधा राधा राधा। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा राधा राधा अब बन जाएगा, अब बिगड़ भी जाएगा। जो तुम्हें बिगाड़ने वाले उनको बिगाड़ देगा और तुम्हारा बना देगा। फालतू का समय क्यों नष्ट करते हो? मूर्खता है। अगर हम आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे जो निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान शक्ति है, राधा राधा राधा राधा राधा। अब क्या होगा आगे? वही होगा जिसमें हमारा परम मंगल होगा। हम शरणागत हैं, राधा राधा। कदम आगे बढ़ाओ, नहीं पीछे हुआ था उसका वो सब भस्म हो जाएगा। अगर आगे कोई गड़बड़ हुआ, वो हाथ पकड़े गड़बड़ कैसे करने देगा? राधा राधा राधा राधा। अगर इसको छूट दे दी ना, फिर डिप्रेशन में पहुंचा देगा, बेमतलब में पहुंचा देगा। बहुत खतरनाक खेल है सोच, बेमतलब भय, बेमतलब संशय। वो धीरे धीरे आपकी शक्ति को कमजोर करते करते ऐसे में पहुंचा देगा, फिर दवाइयां खानी पड़ेंगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत कीमती समय, बहुत कीमती जीवन, इसको बहुत अच्छे काम में लगा। उत्साह प्राप्त पुरुष सब कुछ कर सकता है। निरुत्साहित कितना भी बलवान हो किसी काम का नहीं रह जाता। उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने स्वशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदंचय। लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाएगी। उत्साह संपन्न अभी करना है, इसी क्षण कार्य करना है। वर्तमान के कर्तव्य पर पूरी दृष्टि और नाम जब चल रहा है, किसी भी तरह की कोई निराशा तुम्हें छू न पाए। हर क्रिया का, जो भी कर्तव्य कर्म का, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं मनमानी आचरण ठीक है कि नहीं ठीक है, इसका परिणाम क्या होगा, हमें सोच का उस पर कदम रखना है। मनमानी आचरण नहीं करने, क्रिया विधिज्ञम, और जो व्यापार जो नौकरी उस पर ठीक से करो। सफलता असफलता प्रभु के हाथ की बात, कर्तव्य आप ठीक से करो तो आप नाम जप करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, हर समय आनंदित है, उत्साहित है, जितना जीवन जिएंगे मंगल में रहेगा, शरीर छूटेगा प्रभु के पास जाएंगे। खेल ऐसा खेलो जिसमें घाटा ना हो। राधा राधा चल रहा है तो कभी नहीं, कोई बाधा परास्त नहीं कर सकती। अब नाम जप नहीं हो रहा तो सब व्यर्थ विनाशी चिंतन होगा, समय विनाश हो रहा, कुछ लाभ तो मिल नहीं रहा है। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रख। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, किनेस रामचंद्र कर काजा।